0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।

त्वमेकं सहज समरसं सद्गुरुं तं नमामि सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमां।

0: न इन्द्र इद्विषो सपत्ना समान सस्करते
1: यस्ते यद्रप्सस्कन्दाति यस्ते अज्ञाशर्ग्रावच्युतो धिषणायोरुपस्थात् अध्वर्योर्वापरे वायः पवित्रात्तन्ते जुहोमि मनसा वषट्कृतज्ञः स्वाहा देवानामुत्क्रमा नमसि उपयामगृहीतोऽसि मधावे त्वोपयामगृहीतोऽसि माधावाय त्वा उपयामगृहीतोऽसि शुक्राय त्वोपयामगृहीतोऽसि शुचाये त्वा उपयामगृहीतोऽसि नभासे त्वोपयामगृहीतोऽसि नभस्याय त्वा उपयामगृहीतोऽसीशे त्वोपयामगृहीतोऽस्यूर्जे त्वा उपयामगृहीतोऽसि सहासे त्वोपयामगृहीतोऽसि सहस्याय त्वा उपयामगृहीतोऽसि तपासे त्वोपयामगृहीतोऽसि तपस्याय त्वा उपयामगृही

0: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Hindi Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Nayanmar Puranam. The title is Appudi Adigal, presented by Singapore Shankaranarayanan. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: Om Namah Shivaya. Bhaktos, अभी हम सुनेंगे और एक दक्षिण भारतीय संत या नायनमार की कहानी जिनका नाम अप्पूति अडिगल है। तिरुवायूर के निकट तिंगलूर में अप्पूतियर नामक द्विज श्रेष्ठ या ब्राह्मण रहते थे। मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है, ऐसी धारणा के फलस्वरूप उन्होंने जनसेवा के लिए मठ, धर्मशालाएं, पीने के पानी के जगह आदि का निर्माण किया। किरणाऊ परिषद जो कि और एक दक्षिण भारतीय संत हैं, उनका नाम सुनकर अप्पूतियर ने उनके बारे में जाना और जैसे ही उन्होंने जाना उन्होंने तिरुनावो करसर को अपना आध्यात्मिक गुरु बना लिया। गुरु के प्रति असीम भक्ति के कारण उन्होंने अपने घर के गाय बछड़ों, अपने द्वारा निर्मित मठों, मंदिरों और धर्मशालाओं आदि का नाम भी तिरुनावो करसर के नाम पर ही रखा था। संयोगवश एक बार संत तिरुनावो करसर तीर्थ यात्रा करते हुए उनके यहाँ पर आ पहुंचे। जब यह ज्ञात हुआ कि आगत अतिथि ही उनके आध्यात्मिक गुरु हैं तो अप्पूतियर के हर्ष का सीमा न रहा। गुरुदेव के योग्य सत्कार और आतिथ्य का विशेष प्रबंध किया। संत तिरुनावकरसर के लिए भोजन तैयार हो रहा था। अप्पूतियर का ज्येष्ठ पुत्र भोजन परोसने के लिए केले के पत्ते काटने के लिए गया था। बालक पत्ता काट ही रहा था कि एक भयंकर सांप ने उसे डस लिया, तत्काल उसकी मृत्यु हो गई। पति पत्नी ने इस शोक सूचना को गुरुदेव से इसलिए छिपाया कि उनके आतिथ्य में कहीं बाधा न पड़े। पुत्र के मृत शरीर को एक चटाई में लपेट कर घर के पिछवाड़े पर रख दिया और गुरु के भोजन के लिए एकजुट होकर तैयारियां करने लगे। उन्होंने गुरु को भोजन के लिए आमंत्रित किया। संत तिरुनावकरसर ने भोजन के लिए बैठते ही उनके पुत्र को बुलाने के लिए कहा। शोक में डूबे अप्पूति अडिगल और उनकी पत्नी को सारी घटनाएं बतानी पड़ी। तिरुनावकरसर ने उनकी त्याग भावना और धर्मनिष्ठा की भूरी भूरी प्रशंसा की तथा उसी क्षण बालक को शिव मंदिर ले जाकर भगवान से भाव विभोर होकर स्तुति करने लगे। मृत बालक ऐसे उठ खड़ा हुआ मानो नींद से जागा हो। उस युग में यातायात की सुविधाएं बहुत कम थी। दूर चोल देश के ब्राह्मण अप्पूतियर ने तिरुनावकरसर की भक्ति और त्याग भावना का वर्णन सुनकर उन्हें अपना गुरु धारण कर लिया था। तिरुनावकरसर कृषक कुल में पैदा हुए थे, फिर भी उनको ईश्वर तुल्य मानना और उनके लिए सर्वस्व न्योछावर करने की भावना इस बात को सिद्ध करती है कि भक्ति मार्ग में जाति भेद का कोई स्थान नहीं। भक्ति की चरम सीमा में पहुंचकर भक्त के लिए समस्त जड़ चेतन में आराध्य देव के ही दर्शन होते हैं। इसी आधार पर अप्पूतियर को सब कुछ तिरुनावकरसर स्वरूप ही दिखाई देता था। विशाल क्यारियों में युक्त वन प्रदेश को तैयार करना, तालाब खुदवाना, धर्मशालाएं और प्याऊ बनवाना आदि अनेक सेवा कार्य करते हुए अप्पूतियर के मन में उनके साथ अपना नाम जोड़ने का भाव जरा भी नहीं आया। वे निष्काम भाव से इन सब कार्यों को अपने मानसिक गुरु तिरुनावकरसर के नाम से ही चलाते थे। वर्तमान समाज में नाम मात्र के लिए पुण्य कार्य करने वाले लोग अपने नाम को बड़े अक्षरों में खुदवा कर अथवा अन्य प्रकार के प्रचार करवा कर आदि का आश्रय लेकर प्रसिद्धि प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। अप्पूति अडिगल की निस्वार्थ सेवा हमारे लिए उदाहरण स्वरूप है। अपने अतिथि के स्वरूप में आए गुरु के भोजन में व्यग्न न पड़ जाए इसलिए अपने मृत बालक के शव को छिपाकर उस मानसिक यंत्रणा और पीड़ा को सहन किया जो असहनीय है। उधर गुरु ने भी ज्ञान नेत्र से सब जान लिया और शिव की आराधना करके उनकी कृपा से बालक को पुनः जीवित कर दिया। भक्ति के वास्तविक स्वरूप को उद्घाटित करने वाली यह प्राचीन कथा हमारे लिए आज भी मार्ग प्रदर्शन करने में सक्षम है।
0: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ shaivam.org, द नेक्स्ट प्रोग्राम इज स्पिरिचुअल डिस्कोर्स। इन दिस यू आर अबाउट टू लिसन शिवानंद लहरी इन हिंदी, प्रेजेंटेड बाय महामंडलेश्वर स्वामी श्री आत्मानंद गिरिजी महाराज। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।
2: चैतन्य मार्ग यानी ब्रह्म ज्ञान के मार्ग से ही, यानी ब्रह्म विद्या, चिन मार्ग का अर्थ होता है ब्रह्म विद्या रूपी वेदांत मार्ग से प्राप्त होने वाला भवत पदाब्ज युगलम, तुम्हारे चरण रूपी कमल को चाहता है। क्योंकि ये मेरा भी तो पक्षी है ना, तो कृष्ण को तो चाहेगा, वो क्या चाहेगा, हे गौरी नाथ, हे विभो, हे कैवल्य सौख्य प्रदम, क्योंकि मुझे सायुज्य सालोक्य सामीप्य और सराष्टि ऐसा मोक्ष नहीं चाहिए, कैवल्य मोक्ष प्राप्ति के लिए चिन मार्ग मृग्यम वेदांत ब्रह्म विद्या रूपी मार्ग से प्राप्त होने वाला आपके भवत पदाब्ज युगलम, आपके चरण रूपी युगल, मेरा चित्त आपके दो चरण की जोड़ी को चाहता है। क्योंकि मेरे चित्त को यदि आपके चरण कमलों की रज मिल जाए, उसको और कुछ नहीं चाहिए, उसको तो कैवल्य मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, और दुनिया ये कैवल्य मोक्ष और किसी से प्राप्त नहीं हो सकता है। यहां विशेष कहने की बात यह है, हंस पद्म वनम समृच्छति, हंस पद्म वन कमल समूह को चाहता है, उसकी इच्छा तो भूख की निवृत्ति करना है, उसका लक्ष्य भूख निवृत्ति है, भूख निवृत्ति के लिए वह कमल के फूलों को खाकर अपनी भूख निवृत्ति कर लेता है, लक्ष्य भूख निवृत्ति है, चाहता कमल के फूलों को। इसी तरह चातक पक्षी बादल को चाहता है, लेकिन उसको चाहिए पानी, उसको बादल नहीं चाहिए था, बादल से गिरते हुए पानी चाहिए, लेकिन वो पानी तभी संभव होगा जब तक बादल नहीं होगी, तो इसलिए पानी के लिए बादल चाहता है। हम भगवान को चाहते हैं, है ना, जैसे चातक पक्षी पानी के लिए बादल को चाहता है, इसी तरह हम भगवान को चाहते हैं। किसके लिए, बेटे की शादी हो जाए इसके लिए भगवान को चाहते हैं, किसके लिए, भगवान के लिए भगवान को चाहते हैं कि बेटे की शादी हो जाए इसके लिए भगवान को चाहते हैं, बोलो। जैसे चातक पक्षी पानी के लिए बादल को चाहता तो बादल को है, लेकिन बादल से उसको कुछ लेना देना नहीं है, महत्व है पानी की, इसलिए हम भगवान को चाहते हैं, चाहते तो भगवान को है, भगवान से हमको कुछ लेना देना नहीं है, चाहते क्या है, थोड़ा पैसा मिल जाए, ने? हमारे पास आते महाराज, महाराज आशीर्वाद दो, मेरा रोग ठीक हो जाए, आशीर्वाद चाहिए महात्मा से, हम महात्मा को चाहते हैं, चाहते हैं कि नहीं, महात्मा को किस लिए चाहते हैं, रोग ठीक हो जाए, आशीर्वाद देवे और रोग ठीक हो जाए, इसके लिए महात्मा चाहते हैं, यही है ना, है महाराज आशीर्वाद दो, आपकी कृपा हो जाए, वह किस लिए चाहिए, बोले नौकरी मिल जाए, तुम चाहते नौकरी हो, है ना, तुम्हें चाहिए तो नौकरी, लेकिन नौकरी के लिए महात्मा को चाहिए, महात्मा को प्रणाम क्यों कर रहे हो तुम, क्यों नौकरी मिल जाए, कृपा हो जाए, अन्य के लिए अन्य को चाहना ये अनन्य भक्ति नहीं है। इन चार पक्षियों की जो भक्ति है, चार पक्षियों की जो चाहना है, अन्य प्रयोजन के लिए अन्य को चाहना, हम लोग प्राय कहीं ना कहीं यही करते हैं, बेटी की शादी हो जाए, मन्नत कर लिया कि शादी हो जाए तो द्वारिकाधीश के मनोरथ पूरा करें। देव जी, हमको द्वारिकाधीश से कुछ मतलब नहीं है, मनोरथ क्यों कर रहे द्वारिकाधीश की, बेटी की शादी हो जाए। लेव जी, बादल क्यों चाह रहा है चातक, पानी मिल जाए। लेव जी, चकोर जो है चक्रवाक सूर्य को चाहता है, क्या सूर्य के लिए सूर्य को चाहता है, वो अपनी प्रियतमा से मिलने के लिए सूर्य को चाहता है। सूर्य कब आएंगे, सूर्य कब आएंगे, सूर्य कब आएंगे, रोशनी कब होगा, सूर्य के लिए वो इतना तल्लीन होता है, सूर्य के लिए नहीं, अपनी प्रियतमा से मिलने के लिए, अन्य के लिए अन्य को चाहता है। तो इसका नाम क्या हुआ, अनन्य भक्ति हुई नहीं। हम स पद्म बनम समिच्छति यथा नीलांबुदम चातक कोक कोकनद प्रियम प्रतिदिनम चंद्रम चकोरस्तथा चेतो वांछति मामकं पशुपते चिन्मार्ग मृग्यम विभो गौरीनाथ भवत्पदाब्जयुगलम कैवल्य सौख्य प्रदम। आपकी चरण युगल में ही वो क्षमता है कि जीवात्मा को जीते जी कैवल्य मोक्ष प्रदान करने की क्षमता है, इसीलिए मैं आपकी चरण के शरण में हूं, मेरा चित्त रूपी पक्षी भी आपके चरण को चाहता है, कृपा करो। रोधस्तो य श्रमेण रोधस्तो यरित श्रमेण पथिकस छायां तरुर्वृष्टितो रोधस्तो यरित श्रमेण पथिकस छायां तरुर्वृष्टितो भीतः स्वस्थ गृहं गृहस्थमतिथिर् दीन प्रभुम धार्मिकम दीपम संतमसा कुलश्च सिखिनम

ये सात उपमा द्वारा ये समझाया जा रहा है। रोधस्तो ये हितः, तो ये हितः, कोई व्यक्ति बहते हुए बड़े से नदी में गिर गया। कोई व्यक्ति नदी किनारे चल रहा था, चलते चलते असावधानी हुई और बड़े से नदी में गिर गया, जैसे पिछले बार हुआ ना केदारनाथ में, हुआ कि नहीं महाप्रलय, उसको खंड प्रलय बोलते हैं, उसको शास्त्र में क्या बोलते हैं, खंड प्रलय। अब कोई बड़े से नदी में गिर गया हुआ तो बचना चाहता है, तो जल के प्रवाह उसको खींचे जा रहा है, बहाए लिए जा रहा है, उसको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कोई आधार नहीं मिल रहा है, बहाना नहीं चाहता, मरना नहीं चाहता, जीना चाहता है। तो ऐसे मरता हुआ व्यक्ति दोनों तरफ वो किनारा देखता है नदी का, और उसको उसको ये पता भी है, मैं यदि किनारे लग जाऊं तो बच जाऊं, पता भी है, तो कभी इधर के किनारे को देखता है, कभी उधर के किनारा देखता है, कभी उधर देखता है, कभी इधर देखता है, मैं कैसे किनारे लग जाऊं, कैसे किनारे लग जाऊं। जब तक वह नदी के प्रवाह में बहता रहेगा तब तक वह रोध, रोध माने नदी के प्रवाह को रोकने वाला किनारा, रोध, अवरोध, अव उपसर्ग लगा दो तो क्या हुआ, अवरोध, किसका अवरोध, जल का अवरोधक, जल का अवरोध कौन है, तो किनारा, नदी के जो किनारे हैं वही ना जल के अवरोधक हैं, जल को इधर उधर बिखरने नहीं देते, रोकते हैं और सीधा समुद्र की तरफ बढ़ाते रहते हैं। जैसे जल प्रवाह में बगा बहकर जो मरणासन्न व्यक्ति, वह हमेशा किनारे को ही चाहता है, उसको कहोगे नदी में बहते हुए व्यक्ति से, मेरी एक बहुत बढ़िया लड़की है, तू शादी करेगा, क्या कहेगा वो, क्या मूर्खता की बात कर रहे हो, यहां मरे जा रहे हो तुम शादी के, पहले तो किनारा चाहिए हमको, बोलो, बंबई में मलबार हिल में एक फ्लैट है, तुमको फ्री दे देंगे, अरे बाबा पहले किनारा मिले तब ना, उसका लक्ष्य क्या है, बचना, बचाएगा कौन, किनारा, जल का प्रवाह तो उसको बचा नहीं सकता है, वो तो हर हालत में मरेगा। इसीलिए तो यह हृदय, तो यह हृता, हृता जल के द्वारा अपहरित यानी जल के प्रवाह में खींचते हुए बहता हुआ जाने वाला व्यक्ति किसको चाहता है, रोधः, रोध माने तो यह रोधः, जल को रोकने वाला किनारा चाहता है। रोधस्तो यहृतः श्रमेण पथिक छायाम, पथिक पैदल चलने वाला यात्री, पदयात्री, पथिक गर्मी से संतप्त हुआ हुआ पैदल चलने वाला पथिक क्या चाहता है, तरोर छायाम, कोई घने पत्ते वाले पेड़ की छाया चाहता है, समझे कि नहीं, तरोर छायाम, पेड़ की छाया, शीतल छाया कौन चाहता है, पथिक श्रमेण, श्रम द्वारा यानी थकान से थका हुआ पैदल चलते चलते श्रांत हुआ हुआ थका हुआ यात्री पथिक, तरोर छाया जैसे पेड़ की छाया को चाहता है। वृष्टि तो भीतः,
प्रचंड मूसलाधार पानी में भिजा हुआ व्यक्ति स्वस्थ गृहम, वह कहीं न कहीं प्रत्यक्षालय, कोई न कोई घर, कोई धर्मशाला, कोई मजबूत आश्रय चाहता है। कौन? वृष्टि तो भीता, बारिश से डरा हुआ व्यक्ति वह कोई घर चाहता है, मजबूत घर की इच्छा करता है। गृहस्थम अतिथिर, शाम के समय का जो यात्री है अतिथि, वह क्या चाहता है? किसी गांव में मुझे आश्रय देने वाला कोई अच्छा घर मिले, गृहस्थी का कुटुंबी परिवार मिले, तो जाके मुझे सोने के लिए भी देवे, खाने के लिए भी देवे, हाँ, भोजन की व्यवस्था करे, विश्राम की व्यवस्था करे। अतिथिर गृहम, गृहस्थम, अच्छे उदार मना गृहस्थों की इच्छा करता है अतिथि। गृहस्थम अतिथिर दीन प्रभुम धार्मिकम, जो गरीब है, दीन है, दुखी है, वह प्रभुम धार्मिकम, कैसा चाहिए प्रभु? धार्मिकम प्रभु, मन में पूरा दया और धर्म से भरा हुआ कोई समृद्धशाली सेठ की कामना करता है। कौन? दीन, दीन व्यक्ति धार्मिक समृद्धशाली सेठ की इच्छा करता है। कोई सेठ आवे, लेकिन सेठ के पास धन तो होगा, मन नहीं होगा तो सेठ क्या काम करेगा? इसलिए धार्मिकम, मेरी दीनता को समझने वाला धार्मिक भावुक सेठ की कामना करता है। दीन प्रभुम धार्मिकम दीपम संतमसा कुलश्च, रात्रि में अंधकार में डूबा हुआ व्यक्ति कुछ नहीं देख रहा है अंधकार में, तो वह व्यक्ति सबसे पहले क्या चाहता है? दीपम, वो दीयो को, बत्ती को चाहता है, रोशनी को चाहता है। दीपम संतमसा कुलश्च सिकिनम सीतावृत, ठंडियों से कांपता हुआ व्यक्ति किसको चाहता है? सिखी को। सिखी माने अग्नि, अग्नि जलती है तो शिखा उत्पन्न होता है ना, है? सिखी माने अग्नि। सीतावृत, ठंडियों से कांपता हुआ व्यक्ति किसको चाहता है? अग्नि को। सिकिनम तथा त्वम, यथा तथा, जैसे तोय हृत रोधः पथिक श्रमेण छायाम तरोर, तरोर छायाम, वृष्टितो भीत स्वस्थ गृहम, अतिथिर गृहस्थम, दीनः धार्मिकम प्रभुम, संतमसा कुल दीपम, सीतावृतः सिखिनम तथा, यथा तथा, चेतः, हे शिव, मेरा चित्त भी इसी तरह सर्वभयापहम, समस्त भयों को हरण करने वाला संबोहो पदाम्बोरुहम, भगवान शिव के चरण रूपी कमल, संबो पद अंबु उह, चरण रूपी कमल, ब्रज सर्व पहाप सुखम ब्रज, तुम उनके चरण में पहुंचो,
तो तुम्हें सर्व भयापह, न तो नदी में बहने का डर रहेगा है? न नदी यात्रा में थकान होने का श्रम का डर रहेगा, न तो वृष्टि पानी में भीज कर मरने का डर रहेगा। और उनके चरण में जाओ तो भोजन भी पर्याप्त मिल जाएगा, गृहस्थियों की किसी की जरूरत नहीं। और उनके चरण में जाओगे तो तुम्हारी दीनता भी खत्म, कोई सेठ साठ की जरूरत नहीं है। अरे सेठ को सेठ बनाने वाला तो वही तो है, हाँ? उनके चरण में जाओगे तो अंधकार में बैठना नहीं पड़ेगा। भगवान शिव के चरण में रहोगे तो शीत ठंडी तुमको क्या छोएगी, बोलो? कुछ नहीं छोने वाली है, हाँ? वो तो बर्फ में भी राख लपेट कर बैठ जाते हैं, वहां तो उनके चरणों में तो बस ऐसे आनंद आएगा। ऐसे गर्मी है कि क्या कहना। भया दस्याद अग्निस्तपति उपनिषद में कहा है, कठोपनिषद में यमराज ने, भया दस्याद अग्निस्तपति, अग्नि हमेशा गर्म क्यों रहती है? उस परमात्मा के डर के मारे कभी शीतल नहीं होती है, वो उसी के डर से हमेशा गर्म रहता है, रहती है अग्नि। और जिसके डर से अग्नि गर्म रहती है तो उसके चरण में बैठोगे तो तुम्हें ठंडी से मरना पड़ेगा, बोलो? हाँ, ये भी बड़ा सुंदर है, यहां चित्त को समझा रहे हैं। मेरा चित्त भी ठीक इसी तरह से कोई ना कोई चाहता है, ये चित्त और किसी के शरण में मत जा। सर्व भयापहम संभो पदाम्बोरुहम ब्रज, बस उनके चरण के शरण में जा, सारा डर भय सब खत्म हो जाएगा। रोधस्तो यहिता श्रमेण पथिक छायां तरोर वृष्टितो भीत स्वस्थ गृहम गृहस्थ मतिथिर दीन प्रभुम धार्मिकम दीपम संतमसा कुलश्च सिखिनम सीतावृतस्तम तथा चेत सर्व भयापहम ब्रज सुखम शंभो पदाम्बोरुहम। अंकोलम निज बीज संतति रयस कांतोपलम सूचिका साध्वी नैज विभुम लता क्षितिरुहो सिंधु सरित बल्लभम प्राप्नोति यथा तथा पशुपते पादारविंदद्वयम् चेतो वृत्तिरूपेत्यतिष्ठति सदा सा भक्तिरित्युच्यते। और दृष्टांत देकर समझाते हैं। अंकोलम ये वृक्ष जाति है, अंकोल वृक्ष है। निज बीज संतति, उस अंकोल वृक्ष का जो फल है उन फलों का नियम है, पककर पेड़ से गिरते ही वह इधर उधर नहीं भागते, उस पेड़ के मूल में सब एकत्र हो जाते हैं अपने आप ही, हाँ? वो फल की विशेषता है, इधर उधर नहीं जाते। पोखरा में हमारे

खूब खाते हैं उसको। उसके बाहर जो होता है गुदा छिलका, वो पकता है तो एकदम नीला हो जाता है, बैंगनी कलर का होता है। कच्चे में हरा होता है, पकने के बाद बैंगनी कलर का नीला होता है वो। पक्षी को वो इतना प्रिय है, इतना प्रिय है, रात भर पक्षी उसी को खाते। रुद्राक्ष के पेड़ के नीचे रुद्राक्ष खोजने का एक दाना नहीं मिलेगा। होता क्या है, जब फल पकते हैं तो रुद्राक्ष के पेड़ के पत्ते भी कम होते हैं, और वो पक्षी फिर वो पत्ते जहां कम होंगे वहां नहीं बैठता है, आएगा उड़कर जो पका हुआ फल होगा उसको तोड़ेगा, जहां घने पत्ते होंगे पेड़ उस पेड़ में जाकर आराम से छुपकर पत्ते के नीचे छुपकर खाता रहेगा, और ऊपर के सब गुदा खाकर छिलका खाकर फिर वो जो नीचे का दाना है वो कठोर है, वो दाना तो खाएगा नहीं, वो नीचे गिरता है। तो हमसे पूछते हैं महाराज रुद्राक्ष, बोले उस पेड़ के नीचे जाकर खोजो। वो रुद्राक्ष का पेड़ है, बोले रुद्राक्ष पेड़ नहीं है। पर रुद्राक्ष का पेड़ नहीं है तो फिर वहां कैसे रुद्राक्ष मिलेगा, बोले यही तो विशेषता है, रुद्राक्ष के पेड़ के नीचे रुद्राक्ष नहीं मिलते। जो रुद्राक्ष नहीं है वहां नारेश्वर का पेड़ है, बहुत घना पत्ते हैं, उसमें छुपकर रात भर वही खाते रहते हैं, वही नीचे गिराते रहते हैं, उस पेड़ के नीचे रुद्राक्ष मिलते हैं। इसी तरह अंकोल नामक जो वृक्ष है, कि पोखरा के ये वर्णन सुनकर तुम्हारे मन में जाने की इच्छा नहीं हो रही है, है? और वहां से हिमालय ऐसा दिखता है, पर्वत हिम श्रृंखला, क्या आनंद, ऐसे लगे कि तुम उसको पकड़ लो हिमाल को, बर्फीले हिमाल। लेकिन तुम डर जाओगे फिर मारा ठंडी लगेगी, लेकिन बड़ा आनंद आएगा, ठंडी भी नहीं लगती। हां एक वहां की विशेषता है, हिमाल नजदीक होने पर भी ठंडी नहीं लगती, और इधर हिमाल दूर होने पर भी ठंडी लगती। बिहार है, दिल्ली है, लू माने शीतलहरी चलती है, वहां शीतलहरी नहीं चलती। कारण क्या है, प्रातः काल सूर्य उदय होते ही दिन भर धूप इतना खिला रहता है, इतना धूप खिला रहता है कि दिन भर एनर्जी खूब गर्म होता है, घर भी गर्म रहेगा, कपड़े भी गर्म हो जाएंगे, शरीर भी गर्म, तो ठंडी नहीं लगती। और इधर क्या होता है, जबकि बहुत दूर है हिमाल, लेकिन ये धुआं और पोल्यूशन के चलते यहां धूप नहीं खिलता, धूप में वो तेज नहीं रहता यहां, इसलिए यहां ठंडी बनी रहती है, ज्यादा ठंडी, वहां इतना ज्यादा ठंडी नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, और जंगल तो है ही है, लकड़ी खूब मिलेगा वहां, जला देंगे लकड़ी, चिंता न करो, आओ जरूर, बनाओ प्रोग्राम आने का। रुद्राक्ष मिलेगा, कार्तिक में रुद्राक्ष पकता है, दिवाली दशहरे के समय में रुद्राक्ष पकता है, इस समय तो फूल आ गया है। अंकोलम निज बीज संतति, अंकोल नामक जो वृक्ष है उसके जो बीज हैं वो सब पेड़ से निकलते उसी के जड़ में आकर इकट्ठे हो जाते हैं। अयस्कांतोपलम सूचिका, सूचिका माने सुई या लोहा, लोहे के टुकड़ा, सूचिका का अर्थ लोहे का टुकड़ा। अयस्कांतोपलम चुंबक, चुंबक की तरफ अपने आप ही खींचा जाता है और चुंबक से जुड़ जाता है वो। इसी तरह साध्वी नैज विभुम, और पतिव्रता स्त्री अपने पति को ही चाहती है, पति के अलावा और किसी का स्मरण नहीं करेगी, जैसे सीता का था, सीता राम के अलावा और किसी का स्मरण नहीं कर सकती। साध्वी, साध्वी माने पतिव्रता स्त्री, नैज विभुम, निज विभुम माने अपनी, अपने पति के अलावा दूसरे की कामना नहीं करती।

0: और जो लता है बेल है वह पेड़ को चाहती है क्योंकि उसका सहारा वही है। चितिरूहम माने पेड़। सिंधु सरित बल्लवम, सिंधु माने नदी, नदी किसको चाहते हैं? सरित बल्लभम समुद्र को। प्राप्नोती तब जाकर इनको आनंद होता है। साध्वी को अपना पति प्राप्त होता है तो उसको परम आनंद की अनुभूति होती है। नदियों को समुद्र प्राप्त होता है तो नदियां शांत हो जाती हैं। लता पेड़ को प्राप्त होते हैं तो उसके सहारे से बहुत ऊपर उठ सकती है, अन्यथा सिकुड़ जाती है लता। प्राप्नोती है यथा, ये 16 दृष्टांत हंस पद्म वनम समिच्छति से लेकर यहां तक सरित बल्लभम तक 16 दृष्टांत हैं। यथा जैसे, तथा उसी तरह। हे पशुपते, पादार विंद द्वयम, आपके दोनों चरण युगल चेतो वृत्ति रूपेत्य तिष्ठति सदा, मेरा चित्त रूपी वृत्ति आपके चरण को प्राप्त करने पर ही परम आनंद और परम शांति को प्राप्त होवेंगे, वही मेरे चित्त वृत्ति का आपके प्रति का भक्ति है। इसलिए आपके जैसे पत्नी पतिव्रता पति अपने पति के अलावा दूसरे का स्मरण नहीं कर सकती, इसी तरह मेरा चित्त आपके चरण युगल के अलावा और किसी को इच्छा चाहते नहीं। यही सा भक्ति रीति उच्यते, मेरे चित्त की जो वृत्ति है वही आपके प्रति की परम भक्ति है। और क्या कहेंगे कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओ
1: पार्वती जी ने उत्तर दिया, गोकुलश्च अस्ति, गोकुल में चली जा, वहां गाय चराते हुए उनके पीछे पीछे दौड़ता हुआ तुझे नजर आ जाएगा, चली जा वहां। लक्ष्मी जी ने सोचा कि ये मेरे कोई भी तर्क यहां काम नहीं किए, व्यंग काम नहीं, इनका बराबर मुझे उत्तर मिलता रहा, समानता होती रही। तो फिर लक्ष्मी जी बोली, अच्छा तो बहन देख, तूने जो निर्णय लिया अपने पति के वरण में, मुझे लगता है कि वो तेरा वरण कुछ अच्छा नहीं था। अभी भी मैं तुम्हें समझाती हूँ कि तुम अपने निर्णय को बदल लो। तुमने जिस पति का वरण किया है वो तो अवधूत है, दिगंबर है और अमंगलिक रूप को धारण करने वाला है, चिता की भस्म आदि को। इसलिए तुम अपने निर्णय को, मैं समझती हूँ कि अभी भी तुम्हें बदल देना चाहिए। पार्वती जी ने कहा, बहन सुन, तुम कौन हो? बोले, सिंधु सुता, समुद्र की कन्या, सिंधु पुत्री। और मैं कौन हूं? गिरिराज हिमालय पुत्री, हिमालय पुत्री। और अब जब हम जिसकी पुत्री, मैं हिमालय की पुत्री हूं और तुम सिंधु पुत्री हो, तो तुम्हारा स्वभाव ऐसा होना स्वाभाविक है। क्योंकि तुम्हारे पिता का स्वभाव ही ऐसा है, कभी वो घटता है और कभी वो बढ़ता है, कभी चढ़ता है कभी उतरता है, उसमें हलचल है, एकता नहीं है, वो एक नहीं है। इसलिए उनकी पुत्री होने के कारण तुम अपनी बुद्धि के निर्णयों को बदलती रहो। इसीलिए लक्ष्मी चंचला है, निर्णय बदलती रहती है, घर बदलती रहती है, अभी ये घर बाद में दूसरा घर, इस तरह से घर बदलती रहना, ये तुम्हारा पिता का गुण तुम्हारे अंदर आ गया। परंतु बहन, मैं तो हिमालय सुता हूँ ना, हिमालय कन्या हूँ ना, मेरे पिता का स्वभाव स्थिर है, गिरिराज हिमालय अडिग है, अस्थिर है, और उनकी स्थिरता तो मुझे पिता से प्राप्त है, इसलिए मेरी मति स्थिर है, मैं अपनी स्थिर मति को बदल नहीं सकती हूँ। जो निर्णय मेरा हो गया सो निर्णय मेरा हो गया, मेरे शिव के प्रति जो मैंने निर्णय कर लिया है वो अब बदला नहीं जाएगा। तो कहने का इसका अर्थ बहुत बहुत सारे व्यंग हैं, उनमें से कुछ मैंने आपको सुनाए। तो कहने का मतलब मेरा ये था कि कहीं यहाँ शिव तत्व की व्याख्या हो रही है तो आप ये भेद नहीं कर लेना कि भगवान श्री हरि हर अलग है और हरि अलग है। ये तो केवल एक लीला मात्र का पक्ष है, जो हरि है वही हर है, जो हर है वही हरि है, भगवान हरि हर में अभेदता है, यहाँ कोई भेद नहीं है। तो भगवान शिव स्वयं सृष्टि के कार्य के लिए स्वयमेव ही अपनी माया को जब स्वीकार कर लेते हैं तो माया के वशवर्ती अर्थात जो शुद्ध सात्विक शक्ति है उसके वशवर्ती ऐसे दिखाई पड़ते हैं कि भगवान शंकराचार्य कहते हैं, चिदाभस्मा लेपो गरल वसनम दिप्पटधरो, हे प्रभु आपने आपने अपना वेश ऐसा बनाया हुआ है, चिदा की भस्मी को धारण करते हैं, दिशाओं को पट बनाकर पहनते हैं, चिदाभस्मा लेपो गरल वसनम दिप्पटधरो, और सर्पों को गले में धारण करते हैं, देखने में आपका रूप बड़ा ही अमांगलिक दिखाई पड़ता है, अशुभ रूप, परंतु आपको एक भिखारी अशुभता कैसी दिखाई पड़ती है, बोले जैसे कोई भिक्षुक बना ले, परंतु आपको पदवी क्या मिली है, आपको पदवी ये मिली है कि आपको जगदीश्वर की उपाधि से आपको सुशोभित है, आपके पास जगदीश्वर की पदवी प्राप्त है, आपको जगदीश्वर की उपाधि जो मिली है, भगवान शिव को जगदीश्वर कहते हैं, जगत के ईषण करने वाले, जगत का शासन करने वाले, जगत पर जिनका शासन चले उनका नाम है जगदीश्वर। बोले प्रभु आपको जगत शासन करने की जो उपाधि मिली हुई है, जगदीश्वर की आपको पदवी जो प्राप्त हुई है वो किसके कारण हुई है, भवानी त्वत्माणि ग्रहण परिपाटी फल इदम्। हे भवानी, आपने जो भगवती महाशक्ति का पाणी ग्रहण जो स्वीकार कर लिया, माँ कने आपका हाथ जो पकड़ लिया, जिसके कारण आपको ये पदवी प्राप्त हो गई। तो कहने का भाव ये था कि भगवान शिव स्वयमेव ही अपनी शक्ति को अपने से अलग करते हुए, स्वयं अपनी शक्ति की सत्ता को जब स्वीकार कर लेते हैं तो वो शिव शंकर के रूप में प्रकट होकर, उजागर होकर के इस सृष्टि के जगदीश्वर कहलाते हैं, और शक्ति सहित जो शिव है वो जगदीश्वर है, जगत का शासन करने वाले। तो जगत शासन को चलाते हुए भगवान शिव को ये प्रलय की लीला करनी होती है, और जिसके कारण वो इस तमोगुणी लीला के कारण भगवान शिव को तमोगुणी देव कहा गया है, और शिव अत्यंत जो शुद्ध है, नित्य है, शुद्ध है, अर्थात जिनमें कोई गुणों का विकार नहीं है, वो शिव है। निर्विकार विकार से रहित वो शिव है, और जो अत्यंत सात्विक परम सात्विक जिसके अंदर कोई किसी प्रकार का विकार नहीं है ऐसा निर्विकार स्वरूप शिव कहलाता है। और शिव का अभिप्राय आत्मा है और आत्मा ही शिव है, और उस आत्मा के संग जो वृत्ति है उसी का नाम गिरिजा है, इसीलिए तो

यद्यत् कर्म करोमि तदखिलं संभो तव आराधनम्। भगवान शिव आत्मा तौं गिरिजामति, ये जो शरीर में आत्मा है यही तो गिरिजापति शिव है। आत्मा तौं गिरिजामति सहचरा, ये मति जो बुद्धि है ये भगवान शिव की आत्मा की सहचरी बनकर उनके संग नित्य रहकर बुद्धि गिरिजा है और आत्मा शिव है। बुद्धि गिरिजा है यही पार्वती है और भगवान शिव आत्मा है, भगवान शंकर विश्वास है, याद रखना। भगवान शिव का नाम विश्वास है, विश्वास के रूप में जब शिव रहते हैं तब बुद्धि श्रद्धा बन जाती है, याद रखो। और जब वही शिव शिव के रूप में रहते हैं, निर्विकार रूप में रहते हैं, तब वो आत्मा है और उस आत्मा में स्थिर होने वाली जो मति है उसी का नाम है गिरिजा। गिरिजा वो है जो कभी शिव से कभी अलग नहीं होती है, शिव के संग रहकर शिव के साथ चलने वाली जो अत्यंत शुद्ध सात्विक मति है, उसी बुद्धि है, उसी का नाम गिरिजा है। और शंकर के संग जो निवास करे, भगवान शिव के संग रहने वाली भगवती पार्वती उमा जिनके नाम है, और उमा के रूप में जब भगवान शिव के संग में रहती हैं तो वही श्रद्धा और विश्वास के रूप में प्रणित हो जाती हैं। इसीलिए कहा वंदे भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपिणो। वो श्रद्धा के रूप में भी है, विश्वास के रूप में। कौन है? बोले शंकर और पार्वती गौरी। वंदे भवानी शंकरो, भवानी जो के संग में अर्थात गिरिजा के संग में रहने, और इधर आत्मस्वरूप में ये मति जो निरंतर रहती है। दोनों में, शिव में और इस मति में अंतर क्या है, इन दोनों में वेद क्या है, एक छोटे से उदाहरण से समझिए। एक बार भगवान शिव कैलाश पर बैठे हैं और ये उपदेश की जो परंपरा है ना, प्रवचन की परंपरा, ये परंपरा कहाँ से आई, ये प्रवचन करने की परंपरा कहाँ से आई? बोली ये प्रवचन करने की परंपरा निकली है भगवान शिव से। सदा शिव समारंभम, शिव से ये आरंभ हुई है प्रवचन देने वाली बात, और तब से ये सनकादृशियों से आगे आगे ये क्रम बढ़ता रहा, ये धारा बढ़ती रही। और प्रवचन भगवान शिव का निरंतर किसके संग होता है? बोले माँ पार्वती के संग। शंकर उपदेश देते हैं और माँ उमा इस उपदेश को ग्रहण करती है, ये सुनती है, भगवान शिव सुनाते हैं। इनका ये सत्संग नित्य निरंतर अखंड रूप से चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। एक दिन भगवान शिव माँ उमा को उपदेश सुना रहे थे। उपदेश सुनाते सुनाते यकायक माँ ने देखा, उपदेश सुन रही थी तो कभी कभी सुनने वाले का ध्यान इधर उधर भी हो जाता। उपदेश जब सुना रहे थे भगवान शिव तो अचानक देखा कि माँ पार्वती ने उनके शरीर में जल की एक बूंद आई, छींट पड़ी। जल की इस बूंद को देखकर माँ को आश्चर्य हुआ, आसमान की तरफ देखा, दृष्टि दौड़ाई, कहीं दूर दूर तक कोई बादल नजर नहीं आया। बिना बादल की बरखा की बूंद देखकर माँ को बड़ा आश्चर्य हुआ और बड़े आश्चर्य के साथ माँ ने भगवान शिव से पूछा, महाराज ये बिना बादल की बरखा कैसी, ये जल कैसा? भगवान शिव ने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, हाँ पार्वती, समुद्र में मछली ने करवट बदला और उसके जल की बूंद, उसके करवट बदलने से समुद्र का पानी उछला और उसकी बूंद तुम्हारे पर गिर गई।
माँ को लगा कि इतनी कितनी बड़ी मछली जो समुद्र में करवट बदले और उसकी बूंद मेरे शरीर में आकर यहाँ पहुंचे, इतनी बड़ी मछली। भगवान शिव से सुनकर उन्हें उस मछली को देखने की जिज्ञासा हो गई, उसे देखना चाहिए, वो कितनी बड़ी मछली है उसे देखें तो सही। और उस मछली को देखने के लिए भगवती हिमालय से चली, सागर के तट पर आ गई। जब सागर के तट पर खड़ी हुई देखा तो सागर के किनारे बहुत बहुत बड़ी बड़ी बड़ी सी मछली उन्हें दिखाई पड़ी। और उन्होंने इतनी बड़ी मछली देख करके माँ ने मछली को हाथ जोड़ा कि हे मत्स्य भगवान, आप बहुत महान हैं। जैसे माँ ने सिर झुकाकर हाथ जोड़कर मछली को प्रणाम करना चाह, भगवान शिव की माया थी, माँ ने हाथ जोड़ करके सिर झुकाकर प्रणाम करना चाह तो मछली ने रोक दिया, कहा माँ नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो, अन्याय नहीं करो, मेरे को प्रणाम मत करो और मेरी प्रशंसा भी मत करो कि तुम बहुत महान हो, इतनी बड़ी हो, मेरी क्या महानता है, मैं तो एक तुच्छ जीव हूँ। महानता तो सागर की है कि मेरे जैसे इसमें अनेकों मछलियां पड़ी हैं, जो अनेकों मछलियों को, मेरी जैसी मछलियों को रहने के लिए स्थान दे, ये सागर महान। तो माँ ने सागर को नमन किया। सागर को जब नमन करने लगे, प्रणाम करने लगे, तो सागर ने कहा माँ मुझे नहीं प्रणाम करो, इसमें मेरी क्या मानता है, इसमें मेरी कोई मानता नहीं, मैं तो एक सामान्य हूँ, महानता तो इस पृथ्वी की है जिसने मेरे जैसे एक नहीं सात सात समुद्र को स्थान दिया है, ये पृथ्वी कितनी महान है। तो माँ पृथ्वी को नमन करने लगे कि ये बड़ी है। जब पृथ्वी के पास पहुंची, पृथ्वी को नमन करने लगी, तो पृथ्वी ने कहा माँ आप मेरे को नमन मत करो, इसमें मेरी कोई प्रशंसा नहीं, मैं बड़ी नहीं, मैं महान नहीं, महानता तो उस शेष की है जिसने संपूर्ण पृथ्वी के भार को अपने सिर के ऊपर ऐसे उठाया है जैसे कोई सरसों का दाना किसी की हथेली में रख दे। सरसों के दाने को हथेली में उठाने के समान जिसने इस संपूर्ण पृथ्वी के भार को अपने मस्तक पर लिया हुआ हो, वो शेष महान है। अब तो शेष जी के पास पहुंचकर प्रथम माँ पार्वती उन्हें प्रणाम करने लगी कि हे शेष भगवान, आप बहुत महान हैं। शेष जी ने कहा माँ आप मुझे प्रणाम मत कीजिए, मेरी इसमें क्या महानता है, इसमें मेरी कोई महानता नहीं है। तो पार्वती जी अवाक होकर सोचने लगे कि ये भी कहता मैं महान नहीं, इसने भी बता दिया कि मेरी बड़ाई नहीं, मेरी महानता नहीं, तो आखिर महान है कौन। जब ये मन में सोचने लगी तो शेष भगवान ने कहा माँ मेरी महानता नहीं है, महानता तो इस बात इनकी है जिनके गले में मेरे जैसे अनेकों ही लटके रहते हैं, जिन्होंने मेरे जैसों को अपने गले में लटकाया हुआ है उनकी महानता है, अर्थात जिनके पास से तुम उठ करके यहाँ तक चली आई हो, जिनके पास से तुम उठ करके चली आयो उन्हीं के पास वापस पार्वती जी को भेज दिया कि महान तो वही है, अर्थात जिससे महान कौन, वो शिव महान है जिससे अनंत वृत्तियां उदित होती हैं और जिसमें जाकर अस्त हो जाती है, जहाँ से इस सृष्टि का सृष्टि उदयमान हुई है और जहाँ से ये प्रकाशित हो रही है जिसमें ये लीन अस्त हो जाती है, जो इस सब का साक्षी है, दृष्टा है, वह परम चेतन, वो परम ज्ञान स्वरूप शिव ही महान है। और वो शिव क्या है, वो स्थिर है, न कहीं जाता है न कहीं आता है, वो अटल है, व्यापक है, ये जाने वाली आने वाली जो वृत्ति है, इस वृत्ति का नाम ही बुद्धि है, याद रखना।
आत्मा न तो कहीं जाता है न कहीं आता है, वह तो अपने आप में स्थिर है। स्थिरता में कहीं जाना आना कुछ नहीं है, परंतु जाने आने वाली एक वृत्ति है, जो वृत्ति का अधिष्ठान केवल वो शिव ही है। और ये वृत्ति एक प्रधान रूप से नित्य शिव के संग रहती है, मिलती है, तो उस वृत्ति का नाम बुद्धि है नारायण। इसीलिए कहा आत्मा तम गिरिजा मति, ये मति ही गिरिजा है। शिव नाम अटल का है। सरल शब्दों में ये कहेंगे, शिव शब्द का अर्थ होता है जो अटल है, अचल है, स्थिर है, नित्य है, शुद्ध है, मुक्त है और परिपूर्ण है। और जो चारों कुठस्थ है, माने जिसके अंदर कुछ समाने की ताकत नहीं। इसीलिए आप लोग बाण देखते हैं ना, शिव बाण, लिंग को बाण कहते हैं। बाण नाम इसलिए पड़ा, ये राजा बलि का पुत्र हुआ जिसका नाम है बाणासुर, बाण। तो बाण ने भगवान शिव के, शिव की इतनी पूजा की, बलिपुत्र ने मन में सोचा कि हम विष्णु भगवान की पूजा नहीं करेंगे, हम भगवान विष्णु की पूजा नहीं करेंगे। बोले क्यों नहीं करेंगे, ये तो असुरों के साथ, हम लोगों के साथ छल करते। बामन भगवान ने छल करके ही, बलि को छल के ही तो पाताल भेज दिया था। इसलिए कहा कि ये तो छल करने वाले देव में, विष्णु का छल हमेशा मोहनी अवतार लेकर के भी छल किया, बामन अवतार लेकर के भी छल किया, ये हमेशा विष्णु असुरों के साथ हमारे साथ अन्याय करते हैं, छल करते हैं, इसलिए हम इनकी उपासना नहीं करेंगे। तब बाण ने, राजा बलि के पुत्र ने मन में निश्चय किया कि मैं शंकर जी की उपासना करूंगा। और शिव उपासना करने के लिए उसने जबलपुर के पास में नर्मदा के जल से, नर्मदा की रेणु को लेकर के, मृतिका को लेकर रोज 1.25 करोड़ वो शिवलिंग बनाता था। और ये लिंग कितना बड़ा होता है, अंगुष्ठाकार, इसको कहते हैं वाण लिंग। प्रमाण है कि अंगूठे के समान, अर्थात शिवलिंग बनाता है और उनकी पूजा प्रतिष्ठा करता है और उसे नर्मदा में विसर्जित करता है। इस प्रकार उसने भगवान शिव के नित्य प्रति 1.25 करोड़ शिवलिंग बना करके उनकी पूजा करता है और भगवान नर्मदा में विसर्जन करते। इसीलिए नर्मदा से निकलने वाले जो नर्मदेश्वर हैं, उनकी प्रतिष्ठा नहीं की जाती। कहते हैं प्रतिष्ठा करो तो ठीक, नहीं करो तो ठीक। सारे के सारे नर्मदा के शिवलिंग प्रतिष्ठित ही है, वो उसमें कोई अप्रतिष्ठित नहीं है। इसलिए परंपरा है कि नर्मदेश्वर भगवान, भगवान नर्मदेश्वर की प्रतिष्ठा नहीं होती है, उनकी बिना प्रतिष्ठा भी उनकी पूजा होती है। जैसे गंडकी नदी से मिलने वाले भगवान शालिग्राम की प्रतिष्ठा नहीं होती, वो स्वयं सिद्ध हैं। उसी प्रकार नर्मदा से जो निकलने वाले लिंग हैं, वो स्वयं सिद्ध हैं, उनकी प्रतिष्ठा की बात जरूरी नहीं होती। इसीलिए उसको कहते हैं बाण लिंग, उनका नाम पड़ गया बाण, मतलब लिंग का नाम है बाण, भगवान का बाण, शिव का बाण कहते हैं। क्योंकि बाण के नाम से भगवान शिव के नाम की प्रसिद्धि हो गई। इतनी इतनी इतनी पूजा की बाण ने भगवान शिव को कि भगवान का नाम ही बाण के नाम पर हो गया। इसलिए बाण लिंग कहते हैं, बाण भगवान शिव के लिंग का नाम, लिंग न कहकर भगवान शिव का बाण कहते हैं। तो इस प्रकार जब बाणासुर ने भगवान शिव को प्रसन्न किया, उनसे वरदान मांग लिया, तो कहा भगवान मुझे आपके लिंग बनाने पड़ते हैं ना, तो दो हाथ से लिंग बनाने पर मुझे बहुत तकलीफ होती है, इसलिए आप मुझे 2000 हाथ दे दो। 2000 हाथ लिए उसने और 2000 हाथों से
वो लिंग बनाता है, उनकी प्रतिष्ठा करता है और विसर्जन करता है। इस प्रकार भगवान शिव को प्रसन्न करके बाणासुर ने त्रिलोक की संपत्ति भगवान शिव से प्राप्त कर ली। जब सर्व विजयी हो गया, सब पर अपनी जीत हासिल कर ली, कोई उसके लिए जीतना बाकी नहीं रहा, सब कुछ जीत, सब पर उसने अपना आधिपत्य प्राप्त कर लिया, तो एक दिन बाण कहता है, प्रभु हाथ तो आपकी कृपा से मुझे 2000 मिल गए, पर इन हाथों में खुजली उठ रही है, अर्थात लड़ाई कर, इसलिए मन कर रहा है कि आपके साथ ही आओ दो दो हाथ कर लेते हैं। वो शंकर जी के साथ में ही युद्ध करने के लिए, क्योंकि हाथ की खाज मिटाने के लिए कुछ लड़ना, तो भगवान शंकर से ही कहने लगा, आइए प्रभु मैं आपके साथ ही दो दो हाथ करते हैं। भगवान शिव ने देखा कि ये दुष्ट इस प्रकार की बुद्धि को लिए, भगवान शंकर ने कहा, चिंता मत कर, आगे चल करके द्वापर में मैं श्री हरि के रूप में प्रकट होंगे और वो तेरे हाथ की खाद क्या, वो तेरे दो जो ये 2000 हाथ हैं, इन हाथों को काट कर तेरे वास्तविक दो हाथ रह जाएंगे, बाकी जितने हाथ तुझे प्राप्त हैं वो सब तेरे काट कर समाप्त कर देंगे। वही बाणासुर है जिसने उषा अनिरुद्ध का प्रसंग भागवत में आता है, और भगवान श्री हरि कृष्ण के साथ में युद्ध हुआ, भगवान ने बाणासुर के ये अतिरिक्त हाथ जो थे उन सब को काट दिया था। बाणासुर का प्रसंग भागवत में आता है और उसकी कथा आप लोगों ने सुनी होगी। तो कहने का अर्थ था मेरा, बाण लिंग भगवान का बाण लिंग है और लिंग का आकार ऐसा है कि बाण लिंग के ऊपर आप दूध चढ़ाओ, शहद चढ़ाओ, जो भी आप चढ़ाते हैं वो सब जैसे चढ़ाते वैसे का वैसे उतर जाता है, कुछ भी अंदर नहीं जाता। कहने का अभिप्राय है शिव वो तत्व है जो चारों ओर से दसों दिशाओं, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे दसों दिशाओं में इतना व्याप्त है कि उसे कहीं से भी उसमें कोई छिद्र नहीं दिखाई देता, पोलापन नहीं देता है दिखाता, अर्थात खोखला नहीं है, उस ऐसे ठसा ठस जो घनत्व है, तत्व है, उसी का नाम शिव है और वो शिव हमारी आत्मा है ना। इसलिए शिव को आत्मा से अतिरिक्त नहीं पहचानो, शिव की पहचान आत्मा के रूप में और आत्मा की पहचान शिव के रूप में प्राप्त करना ही इस प्रवचन का उद्देश्य है नारायण। इसलिए जब, क्योंकि शिव कहने पर कहीं हम बहुत दूर का सोचने लगे, वो दूरस्थ नहीं है, अत्यंत समीपस्थ है, अत्यंत पास है, अत्यंत निकट है, और शंकर कहने पर जो उनका सगुण साकार रूप है, ये शंकर अर्थात जगत के कंकर मानो तो शंकर, जितने भी संसार में जो व्याप्तता शंकर की दिखाई पड़ते सगुण रूप में, भगवान शिव के पांच कार्य, शंकर के पांच कार्य हैं। भगवान उत्पत्ति की लीला करते हैं, क्योंकि ऐसा प्रसंग आता है कि जब हिमालय पुत्री के संग भगवान शिव का विवाह होने जा रहा था, तो उस समय नारद जी उपस्थित थे, भगवान शिव की पार्वती के साथ विवाह हो रहा था, तो कहा महाराज अच्छा विवाह के समय में पिता का दादा का सबका नामोच्चार किया जाता, गोत्रोच्चारण कहते हैं। जब गोत्रोच्चार करने की बात आ रही थी, नारद जी ने कहा प्रभु बोलिए आपके पिता का नाम क्या है। तो शंकर जी सोचने लगे, मेरे पिता का नाम, मैंने सुना है कि मेरे पिता, मैं ब्रह्मा जी के भ्रुकुटी से पैदा हुआ तो मेरे पिता ब्रह्मा होंगे। उन्होंने कहा महाराज पिता का नाम बोलिए, तो कदाचित भगवान शिव ने सोचा शायद ब्रह्मा ही होगा, उन्होंने ब्रह्मा जी कह दिया।
कहा महाराज इतने से काम नहीं चलेगा, उनके पिता का नाम बताओ। तो उनके पिता का नाम बताने लगे तो शंकर जी ने सोचा कि नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए थे तो इसलिए नारायण होगा। उन्होंने कह दिया नारायण है। कहा महाराज इतने से बात नहीं चलेगी, तीन पीढ़ियां चाहिए, इसलिए आप अपने तीसरी पीढ़ी का नाम बताओ, उसको कौन है। पिता का नाम ब्रह्मा, दादा का नाम विष्णु, तो परदादा का नाम क्या है। तो शंकर जी सोचने लगे कि परदादा का नाम क्या होगा, मन में विचार करने लगे, इससे ऊपर तो वो भी नहीं जानते। तो शंकर जी ने कह दिया परदादा का नाम, पूछने पर उन्होंने कहा वो तो मैं ही हूँ। शंकर जी ने उत्तर दिया वो तो मैं ही हूँ। तो कहने का अभिप्राय मेरा ये था, जिनकी जिनकी कोई गोत्र नहीं, कोई कुल नहीं, जिसको कहते नकुल, अर्थात जिससे पूर्व कुछ नहीं था, जिससे पूर्व कुछ नहीं था, ऐसे अनादि हैं शिव, जिनसे ये सृष्टि है, और जिनसे पहले कुछ नहीं था, जिनके बाद कुछ नहीं है, और जिनके में ही ये सब कुछ भाषित है, ऐसे तत्व रूप में भगवान शिव हैं। तो शिव के पांच कार्य हैं सृष्टि करने के लिए। पहला कार्य सृष्टि की रचना करना, उत्पत्ति स्थिति लय और अनुग्रह निग्रह, ये भगवान की पांच लीलाएं हैं। इसीलिए पंचमुखी महादेव होते हैं, शंकर के पांच मुख हैं, इन पांचों मुखों से भगवान की लीला होती है, और इसीलिए पांच पंचमुख परमेश्वर भगवान शिव है। यही पार्वती नाते इनके चरणों में आज यही प्रणाम करते हैं। शेष चर्चा कल करेंगे। तवैश्वर्यम, ऐसे शिव का ऐश्वर्य क्या है, इनका ऐश्वर्य भी देखने जैसा है, उनके ऐश्वर्य पर कल विचार करेंगे। बोलो शंकर भगवान की।

0: ஓம் நம சிவாய. யூ ஆர் லிஸ்னிங் டு சைவம் டாட் ஆர்க் ரேடியோஸ் 24/7 ஸ்பிரிச்சுவல் சேனல்ஸ் ஃப்ரம் சைவம் டாட் ஆர்க். ஓம் நம சிவாய.
1: ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் வைதிக் சாந்தி மந்த்ரா பிரசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ ஹரிஹரநந்த சாகர்ஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
2: அந்தகரண் கி சுத்தி கப் ஹோகி, உஸ்கே லியே சாதன க்யா ஹை? தோ கஹா நிஷ்காம் கர்ம, ஆதோ நிஷ்காம் கர்ம நிஷ்டா, ததஹ அந்தகரண சுத்தி, ததஹ சம்தமாதி நிஷ்டா இத்தியாதி. ये क्रम जो है अलग से स्पष्ट कर दिया आचार्य मधुसूदन सरस्वती जी ने गीता की टीका में, कि सबसे पहले मनुष्य को चाहिए कि वो निष्काम कर्म करे. हम लोगों का फल के प्रति इतना लगाव है कि जब तक फल न दिखे तब तक हम लोग कर्म करने के लिए तैयार ही नहीं होते, और यहां तक फल के प्रति हमारा लगाव है. यदि फल कर्म करने से पहले मिल जाए तो हम कर्म करने के लिए भी तैयार नहीं होते. फल मिल गया, अब क्या करना? अब यहां बिल्कुल उल्टा है कि फल के प्रति वैराग्य उत्पन्न करना है. तो कब होगा कि फल का विचार करेंगे? जब तक फल का विचार नहीं करेंगे ने, तब तक हमारी निष्काम कर्म निष्ठा नहीं होगी. निष्काम कर्म में निष्ठ होना है तो फल का विचार करना चाहिए. प्रत्यक्ष से, श्रुति से, अनुमान से विचार करना चाहिए कि ये फल है वो कब तक रहता है. हम लोग देखते हैं, प्रत्यक्ष से देखते हैं कि जो भी कर्म का फल है, चाहे इहलोक हो चाहे परलोक हो, इहलोक यानी कि इस लोक में जो कर्म से मिलने वाला जो फल है वो हम खुद ही देखते, अपनी नजर से, अपनी आंखों से ही देखते कि फल समाप्त हो जाता है. इसका विचार करेंगे तब हमारी निष्काम कर्म निष्ठा बढ़ेगी और यहां तक पहुंचेंगे. हम लोग इस बात को सोचे कि जो भी संसार के अंदर पदार्थ है उन सब का एक एक क्षण में नाश हो रहा है. हमारा ये जो शरीर है वो कर्म का फल है, उसके अंदर हम देखते हैं कि वो धीरे धीरे वृद्ध होता चला जा रहा है और एक समय आएगा कि ये मृत्यु का ग्रास बन जाएगा. और कर्म करने के फलस्वरूप हमको जो भी अन्न, धन, जल, वस्त्र वगैरह जो भी संसार के पदार्थ है वो सब मिल रहे हैं, तो सब हम देखते हैं कि समाप्त होते चले जा रहे हैं. तो फिर सोचना चाहिए कि फल शाश्वत चाहिए कि नश्वर चाहिए. तो प्रत्यक्ष से इहलोक का फल जो है वो नष्ट होता हुआ दिखता है और परलोक का जो फल है जो कर्म से मिलता है वो भी नश्वर ही है. तद्यथा यह कर्म चितो लोक क्षीयते एवमेव अमूत्र पुण्य चितो लोक क्षीयते, ऐसा कहा श्रुतियों में. यह यानी कि जैसे इस संसार में हम कर्म से जो भी चीज प्राप्त करते उसको हम नष्ट होते हुए देखते हैं, ठीक ऐसे ही जो पारलौकिक फल है वो भी कर्म से ही प्राप्त किया हुआ है. तो जैसे यहां कर्म से जन्य फल है वो समाप्त होता है, वैसे ही जो अमूत्र यानी परलोक का फल भी समाप्त होने वाला ही है. और गीता में भगवान ने कहा क्षणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, पुण्य क्षय होने के बाद पुनः मनुष्य को वापस लौटना पड़ता है, मृत्युलोक को वो पुनः प्राप्त होता है, यानी पुनः जन्म और मृत्यु की श्रृंखला में ही वो पड़ता है। इसलिए कर्म का फल नश्वर है, इसको देखते हुए यदि कर्म से हम शाश्वत फल चाहते हैं तो फल की इच्छा को छोड़ करके यदि हम कर्म करेंगे, निष्काम भाव से हम यदि कर्म करेंगे तो एक समय आएगा कि हमारा अंतकरण शुद्ध हो जाएगा। अंतकरण शुद्ध होने का अभिप्राय है कि परमात्मा के प्रति इतनी उत्कट जिज्ञासा और उत्कट निष्ठा हो जाएगी कि संसार जो है विष जैसा लगे, वही अंतकरण की शुद्धि है। भगवान ने कहा यदा ते मोह कलिलम बुद्धिरि व्यतीत ऋष्यसि तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। अंतकरण शुद्धि का मापदंड बताया कि बुद्धि में से मोह रूपी कीचड़ दूर हो जाए, यही जो है अंतकरण की शुद्धि है। जैसे हमारे वृक्ष के जैसे वस्त्र है, वस्त्र में से जैसे वो मैल निकल जाए तो वो वस्त्र जैसे शुद्ध है, वैसे ही मोह रूपी कलील यानी कि कीचड़ हमारी बुद्धि से अंतकरण से दूर हो जाए तो समझ ले कि हमारा अंतकरण शुद्ध हो गया। इसलिए मोह का जो है निवारण विवेक से होगा। मोह कहते हैं अविवेक, तो विवेक यदि होगा तो मोह रूपी कीचड़ दूर होगा और निष्काम कर्म के फलस्वरूप ये होता है, और विवेक से ही वैराग्य होगा। विवेक ये होगा नित्य और अनित्य को जानने का जो है बुद्धि का जो स्वभाव, यही विवेक है। ये नित्य है और ये अनित्य है, तो फिर ये निश्चित हो जाए कि ये पदार्थ नित्य है और ये पदार्थ अनित्य है, तो अनित्य कोटि में सारा संसार आ जाएगा कि संसार के अंदर इहलोक और परलोक के जितने भी फल है भोग है वो सब अनित्य है। कई बार ऐसा होता है चलो इस संसार के फल अनित्य हमको लगे तो हमारी दृष्टि जो है परलोक की ओर जाएगी, किंतु वह भी अनित्य है ऐसा श्रुति स्मृति और न्याय से जब हम निश्चित कर लेंगे तब कहीं भी नहीं जाएगी, और केवल एकमात्र परमात्मा विषयिणी जिज्ञासा ही होगी कि अब मेरे को परमात्मा से ब्रह्म से अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहिए, तो तभी विवेक से वैराग्य होगा। नित्य परमात्मा के प्रति प्रेम और अनित्य संसार से जो है वे तृष्णा का अभाव हो जाना कि संसार नहीं चाहिए, संसार अच्छा न लगना ही वैराग्य है। इसलिए यही वैराग्य रूपी शस्त्र से संसार का छेदन यानी उसके अंदर से अरुचि, रुचि का न होना ही संसार का छेदन है। वैसे तो आप संसार को उखाड़ नहीं सकते क्योंकि संसार ये बीज रूप से अनादि है, किंतु व्यक्तिगत रूप से हमारे अंदर ये योग्यता आ जाए तो संसार रूपी वृक्ष का क्या हो जाएगा, छेदन हो जाएगा। इसलिए विषयों के प्रति वैराग्य लाना ही ये सबसे बड़ा शस्त्र है। इसलिए विषयों में वैराग्य तभी आएगा कि जब हम विषयों के स्वरूप का विचार करेंगे। भगवान शंकराचार्य जी विवेक चुडामणि में कहते हैं कुरंग मातंग पतंग भृंगा मीना हता पंच विरेव पंच एक प्रमादी स कथम हन्यते यह सेवते पंच विरेव पंच। विषय पांच है ना, पांच विषय शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये पांच ही विषय है, और पांच विषयों के प्रति तृष्णा का अभाव हो जाना ही वैराग्य है। और देखिए ये तभी होगा कि जब हम इनका यथार्थ विचार करें। देखिए मनुष्य को ये पांचों विषय भोगने के लिए मिले हुए। भगवान शंकराचार्य जी वैराग्य हो इसलिए कहते हैं कि देखो कुरंग है, मातंग है, पतंग है, भृंग है और मीन है। ये पांच जो है जीव है, वो पांचों जीव जो है एक एक विषय को भोगते हैं। कुरंग कहते हैं हिरण को, हिरण को शब्द विषय बहुत अच्छा लगता है सुनना, तो एक शब्द विषय के प्रति अत्यधिक रुचि के कारण हिरण जो है सुनने में इतना तत्पर हो जाता है, मशगूल हो जाता है कि हिरण को पकड़ने वाले, शिकार करने वाले उनको सरलता से पकड़ लेते हैं। मातंग कहते हैं हाथी को, हाथी बहुत बलवान होते हुए भी उनको स्पर्श विषय बहुत अच्छा लगता है। वो दिन भर स्पर्श के लिए, हथनी के स्पर्श के लिए वो लालायित रहता है, इसलिए हाथी को पकड़ने वाले वो जंगल में एक बहुत बड़ा खड्डा करते हैं, उसके ऊपर ऐसे सड़े हुए बांस बिछा करके ऐसे ही जो है जो घास फूस की एक हथनी खड़ी करते हैं, बाहर से बिल्कुल वो हथनी दिखे कि हथनी ही खड़ी है, तो हाथी जब जैसे उनको देखे तो स्पर्श करने के लिए प्रवृत्त हो और जैसे ही नजीक जाए तो वहां तो नीचे खड्डा है और खड्डे में हाथी उनके वजन से वो जो सड़े हुए बांस बल्ले है वो टूट जाते और हाथी जो है खड्डे में गिर जाता है और कई दिन तक उसको भोजन नहीं दिया जाता है, कमजोर हो जाता है। फिर उसको जो है पकड़ने वाले उनको पकड़ लेते हैं और उनसे न जाने क्या क्या काम करवाते हैं। तो और जो है आगे कहा पतंग है, उनको रूप विषय बहुत अच्छा लगता है, जैसे वो रूप दिखे तो उनको वो जो है चूमने के लिए वो पतंग जाता है दीप के पास और जैसे वो रूप को वो चूमता है और अंदर जल करके खाक हो जाता है। भृंग है, भ्रमरा है, उसको सुगंध विषय बहुत अच्छा लगता है, कमल के अंदर वो दिन भर बैठा रहता है, सुगंध लेने में वो इतना मशगूल हो जाता है कि शाम हो जाती है, कमल फूल के अंदर यदि बैठा हुआ है तो जैसे सूर्यास्त हो जाता है तो कमल है वो सिकुड़ जाता है और भ्रमर को पता है कि सिकुड़ जाएगा, फिर भी जो गंध की चाह के कारण वो उड़ नहीं सकता, उड़ता नहीं है, वो चाहे तो उड़ सकता है किंतु वो उड़ता नहीं है और सोचता है कि सुबह होगी तो फिर खिल जाएगा, यहीं बैठे रहो रात भर जो है गंध का ग्रहण करते रहो, और सुबह में हाथी आते हैं तो उनको उखाड़ फेंकते हैं और भ्रमर का भी नाश हो जाता है। मीन मछली को रस विषय बहुत अच्छा लगता है, अब वो रस के कारण वो भी मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। मछली को पकड़ने वाले एक कांटे के ऊपर जो है आटे की गोली लगाते हैं, वो गोली जैसे खाने के लिए मछली प्रयास करते ही उसके तलवे में वो कांटा भूक जाता है और मछली मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। तो कहा कि कुरंग, मातंग, पतंग, भृंगा, मीना, हता, पंच विरेव पंच, एक प्रमादी, एक एक विषयों में प्रमाद के कारण उनका हनन हो जाता है। तो कहा स कथम न हन्यते, उसका हनन क्यों नहीं होगा, यह सेवते पंच विरेव पंच, जो पांचों विषय एक साथ में जो भोगते हैं तो उनका तो हनन कंपलसरी है, निश्चित ही है। तो मनुष्य को पांचों विषय मिले हुए हैं ना, मनुष्य को तो पांचों विषयों में इतनी ही रुचि है जितनी उन पांचों जीवों को एक एक में है। इसलिए कहा कि विषय के प्रति वैराग्य जब तक नहीं होगा तब तक परमात्मा की शोध हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो चित्त है या तो संसार की ओर जाएगा या परमात्मा की ओर। जब संसार की ओर है तो परमात्मा की ओर नहीं है, और परमात्मा की ओर है तो संसार की ओर नहीं हो सकता है। दो मार्ग है, एक संसार है एक और परमात्मा है। अब यदि हम ये सत्संग वगैरह नहीं कर रहे और जो नहीं करते हैं तो उनका मन किधर है बताओ? संसार की ओर है। वो संसार को ही जो है सुखदायक मानते हैं, उनको ही लक्ष्य मानते हैं। इसलिए आहार, निद्रा, भय और मैथुन ये चार कार्य में वो पड़े रहते। उसका जो पांचवा कार्य है धर्म, वो उनको समझ में ही नहीं आता है। भर्तृहरि राजा ने कहा, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य मेतत पशुभिर नराणाम धर्मो ही तेषा मधिको विशेष धर्मेण हीनः पशुभि समानः। आहार, निद्रा, भय और मैथुन सामान्यम एतत, ये सामान्य है यानी कि समान रूप से सबके अंदर है, चाहे मनुष्य हो कि चाहे पशु हो, कीट पतंग हो, सबके अंदर पांचों विषय ये समान है। और ये आहार, निद्रा, भय और मैथुन ये चारों कार्य भी समान है। सबको आहार मिलता है, सब सोते हैं, सबको भय लगता है, और सब अपनी संतति परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। तो मनुष्य को चाहिए कि वो धर्म का संग्रह करे। धर्मो ही तेषाम अधिकः। यदि पशु की पंक्ति से मनुष्य को यदि अलग किया जा सकता है तो वो एक ही कारण है, धर्म से ही। धर्म से ही मनुष्य जो है पशु से वो ऊपर कहला सकता है, यदि धर्म अपने जीवन में है तो। इसलिए धर्मेण ही नहा पशु भी समाना, जो धर्म का पालन नहीं करता है वो पशु है। तो जैसे इस तरह के जब हम सत्संग में जब ऐसे वाक्य सुनते हैं, श्रवण करते हैं, तो हमारे मन में निश्चय हो जाता है कि हमको परमात्मा का स्मरण, भजन, ध्यान करना चाहिए। तब जाकर के संसार के प्रति हमारी धीरे धीरे रुचि कम होगी, और जैसे रुचि कम होती चली जाएगी तो मानो कि संसार जो है कटता चला जाता है। देखिए, यदि कुहाड़ी से काटते तो एक बार प्रहार करने मात्र से तो संसार कटता नहीं है ना, और वो वृक्ष कटता नहीं है ना। बार बार आप जैसे उनका जो घेराव जितना वृक्ष का बड़ा है उतना ही ज्यादा जो है वो वहां पर प्रहार करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये संसार रूपी वृक्ष के पर रोज रोज जो है प्रहार करना होगा, उसके लिए रोज रोज सत्संग करना होगा, रोज रोज स्वाध्याय करना होगा। तो वही जो अभ्यास है, प्रयत्न है, और इसी प्रयत्न से संसार रूपी वृक्ष जब कट जाएगा तो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति इसी से संभव है। और उसके बाद जैसे कहा कि परमात्मा का अन्वेषण हो पाएगा। इसलिए पहले यहां पर भावना की गई कि मैं संसार रूपी वृक्ष का छेदता हो जाओ, छेदन करने वाला हो जाओ। तो छेदन करने वाला जैसे कहा तभी हो सकता है कि जब हमारे निष्काम कर्म में निष्ठा बढ़े। तो जैसे निष्काम कर्म में निष्ठा बढ़ गए, विवेक आदि साधन संपन्न हो गए, तो उसके बाद ये कोटि आएगी कि प्रेरयिता। जैसे कहा कि भगवान भाष्यकार ने रेरिवा का अर्थ किया है प्रेरयिता, में प्रेरयिता हो जाओ, यानी कि जो प्रेरिय कोटि से उठकर के प्रेरिता, प्रेरणा करने वाला। जैसे कोई व्यक्ति किसी को प्रेरित करता है, देवदत्त नाम का व्यक्ति यज्ञदत्त को प्रेरित करता है, तो देवदत्त वैसे अपने स्वरूप से तो खड़ा था, किंतु यज्ञदत्त ने कहा कि घटा माना ये घड़ा ले आओ, तो देवदत्त है वो घड़ा लेने के लिए प्रवृत्त हो गया और यज्ञदत्त वहीं पे खड़े हैं। क्रिया किस में हुई? देवदत्त में हुई। घड़े

होता ही रहता है। देखो संसरण ही संसार का स्वभाव है। संसार कहते हैं संस्कृति गच्छति इति संसार, जिसका 24 घंटा 365 दिन संसरण होता रहे उन्हीं को कहते हैं संसार। और ये संसार जड़ है तो जड़ के अंदर जो है गति स्वभाव या स्वरूप से संभव नहीं है, तो उनका कोई न कोई प्रेरक होगा जिसकी शक्ति से संसार चलता है। तो भला बताइए किसकी प्रेरणा से संसार चल रहा है, तो कहना होगा कि परमात्मा की, परमात्मा की शक्ति से ही संसार चलता। संसार की बात थोड़ी छोड़िए, हमारा ये जो शरीर है वो शरीर का प्रेरक कौन है, कौन अंदर है जिससे कि ये शरीर जो है चलता फिरता खाता पीता है, तो देखिए आत्मशक्ति से ही सब हो रहा है। यदि आत्मा नहीं है तो, आत्मा निकल जाए तो शरीर का क्या होगा, शरीर समाप्त हो जाएगा। और प्रेरणा का अर्थ है केवल रहने मात्र से जो कार्य हो। देखो ये शरीर के अंदर जो कार्य हो रहा है वो आत्मा के रहने मात्र से, आत्मा कुछ करता नहीं है क्योंकि आत्मा तो अकर्ता है अभोक्ता है, किंतु उनकी उपस्थिति मात्र से ये हमारा शरीर चलता है और परमात्मा की उपस्थिति मात्र से ये सारा संसार जो है वो चलता है। भगवान भाष्यकार ने केनोपनिषद भाष्य में एक दृष्टांत बताया, चिकित्साधिष्ठात्रिवत। पहले के समय में जब राजा लोग, उनको जो है पद पद पर कदम कदम पर ये डर रहता था कि मेरे को कोई मार न दे, इसलिए भोजन करते समय उनके मन में ये संदेह बना रहता था कि कोई किसी ने अंदर विष तो नहीं मिलाया होगा। तब उनको परीक्षण रोज रोज किसको खिलाए, ये तो संभव नहीं, इसलिए एक चकोर पक्षी आता है, उस चकोर पक्षी को वो रखते थे। जैसे भोजन का थाल आ जाए और चकोर पक्षी का उसके अंदर दृष्टिपात करवाते थे, तो चकोर पक्षी जैसे ही वो भोजन को देखे, तो यदि भोजन विष मिश्रित है तो चकोर पक्षी की आंख लाल हो जाएगी, तो राजा के भोजन से निवृत्ति। और चकोर पक्षी की आंख में कोई फर्क न पड़े तो राजा ये समझ लेते हैं कि भोजन विष मिश्रित नहीं है, शुद्ध है, तो राजा की भोजन में प्रवृत्ति। अब बताइए राजा की भोजन में प्रवृत्ति और निवृत्ति, उससे चकोर पक्षी का कोई लेना देना नहीं है। चकोर पक्षी ने राजा को ये भी नहीं कहा कि आप भोजन कीजिए या भोजन मत कीजिए, नहीं कहा। और चकोर पक्षी को ये पता भी नहीं कि मेरा उपयोग इस तरह से कर रहे हैं। तो जैसे वहां चकोर पक्षी वो प्रेरक है, ठीक ऐसे ही आत्मा ब्रह्म वो भी क्या है, प्रेरक है। इसलिए मैं प्रेरिता हो जाओ, यानी कि उस कोटे का हो जाओ, मैं शरीर नहीं किंतु मेरा जो अपना स्वरूप है उस स्वरूप को, स्वरूप में मैं निष्ठ हो जाओ, ये भावना है। इसलिए कहा कि एक तरफ से ये होना है कि यदि साधक कोटि में ये कहना होगा कि मैं संसार रूपी वृक्ष का छेदन करने वाला हो जाओ, और सिद्ध कोटि में कहना होगा कि मैं संसार रूपी वृक्ष का प्रेरक हो जाओ। और फिर आगे कहा कि कीर्ति ही पृष्ठम गिरे रिव, संसार रूपी वृक्ष का छेदन होने पर मैं जैसे ब्रह्मनिष्ठ हो जाऊं, मैं मुक्त हो जाऊं, तो वृक्ष का छेदन होने पर ही ये संभव है। तो फिर उसके बाद क्या हो गए, तो कहते हैं कीर्ति ही गिरे पृष्ठम इव, कीर्ति यानी कि जो मेरी ये जो ख्याति है इस निमित्तक,

0: वो गिरहे पृष्ठम, पर्वत का जो ऊपरी भाग उसको कहते हैं पृष्ठम। पर्वत का जो ऊपरी भाग है चोटी, उसके सदृश मेरी कीर्ति हो जाए। तो आत्मज्ञानी की जो कीर्ति है वो बहुत बढ़ जाती है, और किस प्रकार से कीर्ति का अभिप्राय है उसकी भगवान की कृपा होगी तो आगे विचार करेंगे।
1: ओम नमः शिवाय। Dear users of Shaivam.org, we are very much delighted to let you all know that due to the shower of grace from Almighty Lord Shiva and the continuous support from esteemed users like you, our Shaivam.org website had passed 26 successful years of service in the world of Shaivam, and it is all set to sustain the same with lot more new features in the forthcoming years as well. Adding to that, like one more diamond embedded to the golden crown, we are pleased to inform the existence of a new radio, Shiva Tattvam, specifically designed to telecast Shaiva discourses. It's a humble request to you to listen that as well and extend your support. Now you can listen all the Shaiva discourses being scheduled in Shaiva Lahari and Thiruneriya Tamilosi radios in Shiva Tattvam radio only. Thanks for your esteemed support. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Mandakopanishad, presented by Swami Sri Akhandanandagiriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
2: Om Tat Sat. तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वरः यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। यो असौ सोऽहं यजामि। ॐ शांति। ओम तत्सत् ब्रह्मणे नमः। जाग्रतादि त्रयोन्मुक्तं जाग्रतादिमयं तथा ओंकार एकसो संवेद्यं यत्पदं तन्नमाम्यहम्। ओम शांति। मांडूक्य उपनिषद में आत्मा के स्वरूप को अपने ही अनुभव से समझने का प्रयास करें लोग, इस बात को ध्यान में रखकर ऋषियों ने इस उपनिषद की रचना की। अपने अनुभव का अर्थ है कि दैनिक जीवन में जिन अवस्थाओं को हम स्वयं जानते, ये किसी के बतलाने की बात नहीं है। हम सब का अपना अपना अनुभव है, जागने का भी, सोने का भी, नींद का भी और स्वप्न का भी। इसी अनुभव के आधार पर कि हमारा असली स्वरूप क्या है, जागृत में जो हम हैं क्या वो ठीक है, या स्वप्न में जो हम होते हैं वो असली रूप है, या नींद में जो हम होते हैं वो हमारा असली रूप है, और या फिर इन तीनों से अतिरिक्त कुछ और है। इस बात का विचार इसमें किया गया, और इस उपनिषद में श्रुति ये बतलाती है कि जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ये आपका ना तो रूप है, ना स्वरूप है, ना आपका धर्म है। ये आरोपित हैं, ये अपने पर हमने जानबूझ के इनको अपने ऊपर आरोपित कर दिया, अपने ऊपर ओढ़ लिया कि मैं जाग रहा हूं, मैं सो रहा हूं, मैं स्वप्न देख रहा हूं। असल में जो हम मैं शब्द का प्रयोग करते हैं इतना, तो मैं जाग रहा हूं, मैंने स्वप्न देखा, मैंने वो किया, अनुभव कहता है कि इन तीनों ही अवस्थाओं में मैं ना तो जागा, ना सोया, ना स्वप्न देखा। क्योंकि जागृत की कोई भी बात नींद में याद नहीं रहती, और नींद या स्वप्न की कोई भी बात याद नहीं रहती उठ जाने के बाद। अगर मैं भी सचमुच में सो गया होता तो मैं इन तीनों अवस्थाओं का अनुभव करने वाला हूं, मैं स्वयं नहीं सोया था, इसलिए मुझे ध्यान है कि सोया, जागा, स्वप्न देखा। अगर उसके साथ ही साथ सचमुच में ही सो गया होता, जागता, तो पिछली अवस्था अगली में याद नहीं आनी थी। ये जो याद बनी रहती है, मैं बचपन में ऐसे था, मैं शैशव काल में ऐसे हुआ, मैं जवानी में ऐसे हुआ, मैं प्रौढ़ अवस्था में ऐसे हुआ, इसका अर्थ शास्त्र ये कहता है कि मैं शब्द जो है, अगर उसका आप विचार करो, मैं का अर्थ है चेतन। वो चेतन ना उसमें बुढ़ापा, ना उसमें बचपन, ना उसमें जवानी, वो इन सारी अवस्थाओं का प्रकाशिक है। वो जानता है इस बात को कि कभी बचपन था किसी का, क्योंकि बचपन इस शरीर का था। चेतन में कभी बचपन, जवानी, बुढ़ापा नहीं होता। चेतन तत्व अति सूक्ष्म भी है, और जितना जितना कुछ सूक्ष्म होता है उतना ही अधिक वो शक्तिशाली, सक्षम और अविभाज्य होता है। उसको ना तो बांट नहीं सकते बचपन, जवानी, बुढ़ापे में। शरीर को तो कर सकते हैं हम कि ये पहले ऐसे था, फिर ऐसे था, फिर ऐसे था। तो उसी तत्व को उन्होंने ये बतलाने के लिए कि जागृत में भी, स्वप्न में भी, सुषुप्ति में ये अवस्थाएं बदलती रहती हैं, लेकिन वो तत्व जो है असली, जिसको आत्मा कहते हैं, वो नहीं बदलता। यहां पर इस उपनिषद में जागृत अवस्था के अभिमानी को बहिष्प्रज्ञ कहा गया, स्वप्न अवस्था के अभिमानी को अंतःप्रज्ञ कहा गया। अभिमानी शब्द का अर्थ होता है कि काम चलाने के लिए अपने ऊपर कोई नया नाम आरोपित कर लेना, नया नाम बना लेना। जैसे हम अभिमान का मतलब होता है असली नहीं, केवल काम चलाने के लिए। पहले यह था कि मैं गृहस्थ हूं, तो गृहस्थ का अभिमान था, फिर हुआ मैं सन्यासी हूं, तो ये सन्यासी एक अभिमान। अभिमान का मतलब है मान लिया मैंने, लेकिन असल में ये कुछ भी नहीं। असल में जो गृहस्थ था वही सन्यासी है, वही ब्रह्मचारी भी था और वही वानप्रस्थी भी था। लेकिन ये जो अवस्थाएं बदली कि मैं ब्रह्मचारी, मैं गृहस्थ, मैं वानप्रस्थी और मैं अब सन्यासी, तो इसको कहते हैं व्यवहार चलाने के लिए अभिमानी, सन्यास का अभिमानी। तत्व ज्यों का त्यों है, आत्मा वैसे की वैसे ही है अंदर, लेकिन थोड़ी देर के लिए अभिमान कर लेते हैं कि मैं सन्यासी हूं, मैं ये हूं, कोई राष्ट्रपति बन गया तो ये भी अभिमान है। वो चार दिन पहले वो कुछ भी नहीं था, अब राष्ट्रपति बन गया, और टर्म पूरी होने के बाद फिर वो वैसे का वैसा ही। तो जितनी देर वो वहां रहा उतनी देर का अभिमान रहा, लेकिन वास्तविकता नहीं है कि वो सचमुच में हमेशा हमेशा के लिए, जिसको हम एटर्निटी कहते हैं, कि तब तक के लिए कोई कुछ बन गया। तो ऐसे ही जब जाग रहे थे तो थोड़ी जब जागृत को याद रखने के लिए, समझने के लिए बहिष्प्रज्ञा कह दिया कि हमारी उस समय बुद्धि जो है बाहर की चीजों को विषय करती है, और जब हम स्वप्न देख रहे हैं तो अंतः प्रज्ञा, और जब सो रहे हैं तो प्रज्ञान घन, ऐसा उन्होंने नाम रख दिए। और फिर इसको अंतस्थ प्रज्ञ को उन्होंने विश्व कहा और बहिष्प्रज्ञ को विश्व कहा, अंतस्थ प्रज्ञ को चैतस कहा और नींद वाले प्राज्ञ को उन्होंने ईश्वर कहा। इस तरह इसका अर्थ केवल इतना ही है कि जिस समय हम जाग रहे होते हैं और जो भी हम भोग करते हैं जागते हुए, कुछ सुनते हैं, कुछ देखते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ किसी को मिलते हैं, तो वो सब के सब भोग स्थूल भोग होते हैं, अर्थात इंद्रियों के माध्यम से विषयों का स्पर्श करते हैं, तो उसको विश्व के भोग कहते हैं। और विश्व के भोग जो करवाता है उसको वैश्वानर बोल देते हैं, कि वो भोग वैश्वानर करवा रहा है, विश्व उन भोगों को करता है। इसी को धर्म की भाषा में जीव और ईश्वर भी कह लेते हैं। लेकिन विवेक करने के लिए जिस समय हम जागृत में हैं उस समय ईश्वर का भी नाम वैश्वानर रख लिया गया। अपना नाम अगर जीव का विश्व रखा तो उसका वैश्वानर रखा। बात असल में वो समझाएंगे कि ना आप असली वो हो और ना ही वो ईश्वर असली है जिसको कह रहे हैं, ये सब कल्पित, क्योंकि असली तो अपना आत्मा ही है, पहुंचना वहीं पर है। इसीलिए जैसे जागते हुए मैं विश्व अर्थात जागृत का अभिमानी विश्व, जागृत का भोग करने वाला विश्व और जागृत के भोग करवाने वाला वैश्वानर, जो उन भोगों को देता है, अज्ञात सत्ता कह लो, कोई भी शक्ति कहो, उसको वैश्वानर कह दिया। और स्वपन का भोग करता तेजस कहलाता है, वो तेजस है, उसका एक नाम रखा गया तेजस, और उसको भोग करवाने वाला जो है उसको हिरण्यगर्भ कह लेते हैं। नींद में भोग करने वाले का नाम प्राज्ञ है और जो भोग करवा रहा है उसका नाम ईश्वर। तो जैसे तीनों अवस्थाओं में, क्योंकि भोग तीनों अवस्थाओं में हो रहे हैं, तीनों अवस्थाओं का भोग करवाने वाले का नाम भी अलग अलग है। वास्तविकता ये है कि जैसे तीनों अवस्थाओं में आत्मा एक ही है, अवस्थाएं केवल अभिमान मात्र, नाम मात्र हैं, ऐसे ही ईश्वर कोई अलग चीज नहीं है, उसके भी तीन नाम रख दिए गए, उसका अपवाद करने के लिए, बाद में उनको छोड़ने के लिए, कि जैसे मैं ना जागृत, ना मैं स्वप्न वाला, ना मैं नींद वाला, असली मेरा रूप तुरीय, ऐसे ही ना तो वो वैश्वानर है, ना हिरण्यगर्भ है, ना ईश्वर है, वो अपने आत्मा का ही एकमात्र विलास, तो उसका भी निषेध कर देंगे और अपनी अवस्थाओं का भी निषेध। जितना भी होगा ये अवस्थाओं का ही है, तत्व का नहीं। तो इसको अध्यारोप अपवाद, पहले अध्यारोप करना, आरोपित कर लेना, जैसे मैथमेटिक्स में सिखलाते हैं, फर्ज करो कि अमुक इक्वल टू अमुक, और फिर जब वो पूरा सही आंसर आ जाता है मैथ में, तो वो अध्यारोप वाला जो फर्ज किया हुआ था, जो सपोज किया था, उसकी कोई कीमत नहीं रहती। लेकिन जब तक सपोज करके चलोगे नहीं, तब तक हम सही जगह पर पहुंचते भी नहीं। तो इसलिए ये जो अवस्थाओं को लेकर और अवस्थाओं के अभिमानी को और अवस्थाओं के भोग करवाने वाले की कल्पना की गई, वो केवल इसलिए कि अंत में इनका अपवाद करके सही तत्व तक पहुंचा जाए। उस सही तत्व की इस सातवें ऋचा में हम देख रहे थे, सातवीं श्रुति में, कि वो स्वयं नान्तः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न उभयता प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम। फिर उन्होंने कहा अदृष्टम, वो तत्व जो है वो अदृष्ट है। अदृष्ट का अर्थ केवल इतना ही है कि ना तो वो दिखलाई देता है और ना ही उसमें कोई ऐसा दृश्य है कल्पित जिसको आप देख सकें। संक्षेप में इसका अर्थ हुआ कि वो ज्ञान इंद्रियों का विषय नहीं, दृष्ट जो भी होगा वो ज्ञान इंद्रियों का विषय होगा, इसलिए वो ना तो रूप है, ना रंग है, ना रस है, ना गंध है, ना स्पर्श। ज्ञान इंद्रियों का वो विषय नहीं है, ये अदृश्य से उन्होंने बतला दिया। अव्यवहार्यम, अव्यवहार्य का मतलब है कि वो खंडित नहीं है, टुकड़े टुकड़े नहीं है। टुकड़े टुकड़े नहीं का अर्थ होता है कि जो व्यवहार होता है, व्यवहार हमेशा द्वैत में होता है। दो हो तो व्यवहार होगा, कुछ तीन हो, चार हो, दस हो, सौ हो, हजार हो, तो व्यवहार तब होता है जब विभिन्नता। अगर किसी तत्व में विभिन्नता ही नहीं है तो फिर उससे व्यवहार भी नहीं किया जा सकता। व्यवहार के लिए द्वैत का होना जरूरी है, दो हो, तीन हो, चार हो, दस हो, पंद्रह हो, तब व्यवहार होता है। अब व्यवहार्य का मतलब है कि उसके साथ व्यवहार नहीं किया जा सकता। जो उसको बांटकर व्यवहार करते हैं, सारी मुसीबत इसी बात की है कि जब हम उसको बांटकर व्यवहार करते हैं। बांटकर का मतलब है कि मंदिर में वो भगवान है, मस्जिद में वो अल्लाह है, और फिर मस्जिद और मंदिर वाले दोनों अलग अलग हैं, दोनों के मानने वाले अलग अलग हैं, दोनों के प्रशंसक फिर इतने कट्टर हैं कि एक दूसरे को मारने को भी तैयार हैं, एक दूसरे के मंदिर या मस्जिद को गिराने के लिए भी तैयार। तो क्योंकि वो व्यवहार लायक है नहीं, हम उसे व्यवहार कर रहे हैं, इसलिए ये परेशानी हो गई। क्योंकि वो उसको किसी भी तरह से व्यवहार तब तक नहीं होता जब तक पृथकता ना हो। पृथकता का अर्थ अलगाव, पृथकता का अर्थ विभिन्नता, व्यवहार का अर्थ द्वैत। तो जब तक द्वैत नहीं होगा उससे व्यवहार नहीं होगा। तो शास्त्र ये कहता है कि वो अव्यवहार्यम, उससे व्यवहार नहीं हो सकता, लेकिन जब उससे व्यवहार करने लगोगे तो झंझट खड़े हो जाए, मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी, फिर हम उससे कोई वो लाभ जिसको सत्यचित आनंद की अनुभूति तो नहीं होगी, लेकिन उसके विपरीत झगड़े ही झगड़े शुरू हो जाएंगे। मंदिर मकी खुदा है न मस्जिद मकी खुदा, बट जाए जो हद्दों में वो हरगिज नहीं खुदा। जो बांट दिया जाए जिसको, मंदिर मकी खुदा है न मस्जिद मकी खुदा, बट जाए जो हद्दों में वो हरगिज नहीं खुदा। बादल कड़क कड़क के क्या ये कह रहा है सुन, गुंचा चटक चटक के क्या ये कह रहा है सुन, सब्जा लपक लपक के क्या ये कह रहा है सुन, मंदिर मकी खुदा है न मस्जिद मकी खुदा, बट जाए जो हद्दों में वो हरगिज नहीं खुदा। वो कभी हो नहीं सकता, मक्का में है खुदा न मदीने में है खुदा, टूटे हुए दिलों की सफीने में है खुदा, बट जाए जो हद्दों में वो हरगिज नहीं खुदा। हंसते हुए गोशाए गंधम खेतों की, इस गोशाए गंधम से जाके पूछ, कोहसार में झरनों की तरन्नम से जाके पूछ, खिलते हुए फूलों की तबस्सम में जाके पूछ, पत्थर को बोसा दे तो हरम में कहे खुदा, पत्थर तराश दे तो फिर बुतों में है खुदा। मक्का में भी जाके वहां भी शिवलिंग जैसा है जिसको यूं पकड़ते हैं और उसको बोसा देते हैं, चूमते हैं, तो वहां जाके तो उसको चूम कर वो बन गया, यहां उसको घर के उसके हाथ में बंसरी पकड़ा दी है, दोनों जगह पर पत्थर, लेकिन उसको बदलते ही झगड़े शुरू हो गए, बंसरी वाला अलग और वो दूसरे वाला अलग हो गया। तो इस तरह से अगर उसको बांट के, अव्यवहार्य का मतलब है कि मंदिर मकी खुदा है न मस्जिद मकी खुदा, इनको अगर बांटोगे तो फिर वो है नहीं। है देखना उसे तो किसी आस्था में देख। इश्के रवा में देख या रूहे फजा में देख, जश्ने जमीन में देख, उसे कहकशा में देख, दहरो हरम को छोड़ खुले आसमां में देख। बिखरा है धनक बन के दोनों जहां पे आप, वो देख उड़ रहा है फलक से फलक खुदा। मंदर मती खुदा है न मस्जिद मकी खुदा। उसको बांट नहीं सकते, उसको कोई आकाश के कोई टुकड़े नहीं कर सकता। क्या हम ये कहें कि ये इतना आकाश, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये ईसाई है, हवा भी आकाश भी, ये सब कुछ इनको बांटा नहीं जा सकता। और जब तक बांटेंगे नहीं तब तक व्यवहार नहीं हो सकता। तो इसीलिए इसको अव्यवहार्य कहा। तो जो अव्यवहार्य का अर्थ फिर क्या हुआ, जिससे व्यवहार ही नहीं कर सकते तो फिर उसका फायदा भी क्या हुआ। तो वो ये कहते हैं कि उसका फायदा ये है कि अगर उसके स्वरूप को पहचानो तो आप सभी एक हो। जैसे वो बाहर अगर हम देखते हैं कि वो एक ही है, तो अगर आंतरिक दृष्टि से भी देखोगे, आंतरिक दृष्टि का अर्थ ये है कि जब हम सारे सो जाते हैं, वो हिंदू हों या मुसलमान हों, ईसाई हों या पारसी हों, स्त्रियां हों या पुरुष हों, बुढ़े हों या जवान, सब अगर एक जगह पे सोए हुए हैं तो उस समय सब एक ही हैं। अर्थात उनके अंदर वो जो तुरीय तत्व है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ना अंतः प्रज्ञा ना बाहिष प्रज्ञा, उस समय वो सब एक ही है। उस समय सबका अनुभव एक जैसा है। उस समय का सबका जितना भी जो सुख है, अनुभव है, मजा है, कुछ भी कहो, वो एक जैसा है। उठते ही हम बट जाते हैं। बट कैसे जाते हैं? शरीर की दृष्टि से, ये स्त्री है, ये पुरुष है, और ये हिंदू है, ये मुसलमान है। शास्त्र ये कहता है कि ये ठीक है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, लेकिन ये व्यवहार चलाने के लिए है, ये सत्य नहीं। व्यवहार चलाने के लिए का अर्थ ये होता है कि दोनों के अपने अपने कुछ गुण हैं। इस संसार की जितनी चीजें हैं व्यवहार के लिए जो बनाई गई हैं, वो एक दूसरे की पूरक हैं। कुछ मेरे में नहीं है, इसमें है कुछ, इसमें नहीं है, उसमें है कुछ, उसमें नहीं है और किसी में। तो व्यवहार इसलिए बना हुआ है कि हम एक दूसरे के पूरक बने, कॉम्प्लीमेंट्री हों एक दूसरे के, हम एक दूसरे के कंट्राडिक्टरी नहीं, विरोधी नहीं। तो इसलिए व्यवहार चलाना, ये मानकर चलना कि जैसे अब तो जमाना बदला, काफी बदला, लेकिन नहीं तो मुस्लिम सभ्यता में अब भी स्त्री को आदम की वृक्ष पांव की हड्डी से बनाया गया, एड़ी के हड्डी से औरत बनी है, ये उनका सिद्धांत है, और ये वैसे ही रहेगी, पांव की जूती है, ये उनका मुख्य सिद्धांत। ये हमारे यहां जैसे यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता की बात है कि जहां स्त्रियों का सम्मान होता है, ये देवी रूप में है, मातृ रूप में है, ये उनकी सभ्यता में नहीं है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि ये तो तब होता है जब हमने इन शरीरों को सत्य मान ली। सत्य तो आत्मा ही है, रहनी वही है, अंत में पहले भी वही था, अब भी है, बाद में भी रहेगी। व्यवहार चलाने के लिए हम थोड़ा थोड़ा अलग हुए। तो अब व्यवहार्य का अर्थ केवल इतना ही है कि उसको व्यवहार को सत्य ना मान, क्योंकि व्यवहार चलेगा तो सारा जितना भी चल रहे हैं, अगर बीच में आत्मा ही नहीं तो ये खत्म हो जाएगा। लेकिन इस बात को ध्यान रखते हुए कि केवल व्यवहार मात्र के लिए, किसी लड़ाई के लिए नहीं, किसी क्लेश के लिए नहीं, झगड़ों के लिए नहीं, अगर हम इस संसार को जो देख रहे हैं सत्य मान ले तो फिर तो झगड़े होंगे। और अगर हम इसको जैसे आप पहली श्रुतियों में देख चुके कि जागृत की भी उतनी ही वक्त है जितनी स्वप्न की, जागृत और स्वप्न में कोई किसी भी तरह का अंतर कोई बतला नहीं पाया, क्योंकि दोनों के दोनों विषयों को आपने कई बार इस बात को देखा कि जागृत वाले स्वप्न में नहीं रहते तो स्वप्न वाले जागृत में भी नहीं रहते, दोनों खत्म हो गए। जिस समय स्वप्न देख रहे होते हैं तो वो भी सत्य लगते हैं, ठीक लगते हैं बिल्कुल, और जिस समय हम जाग रहे हो तो स्वप्न खत्म हुआ तो वो कुछ नहीं रहते। ऐसे ही जब जागते हुए हम जो कर रहे हैं ये ठीक लग रहा है, लेकिन जब सो जाएंगे तो इसका कोई वक्त नहीं, ये नजर भी नहीं आने। और ऐसा हम देखते भी हैं, जीवन में अनुभव भी है कि कितने कितने लोगों के आपस में तनाव, आपस में तनाजे, आपस में झगड़े, और उन झगड़ों में फिर एक दिन कोई रात को सोया और सुबह उठा ही नहीं, सोया ही रह गया, तो खत्म हो गई सारी बात जितनी थी, वो जो भी चल रहा था व्यवहार की बात, उसकी बात, झगड़ों की बात, इसकी बात, वो सब खत्म हो गए। तो जब ईश्वर को अब व्यवहार्य कहते हैं कि उससे व्यवहार नहीं किया जा सकता, तो इसका अर्थ केवल इतना ही है कि जो कोई भी जहां कहीं भी जैसा भी जो कर रहा है उसको सत्य ना मानो। सत्य ना मानो का मतलब धैर्य से उस स्थिति को आप निपटाओ। अगर हम उसको सत्य मानेंगे तो धैर्य को खो बैठते और कोई बात नहीं। अगर एक बस आई अभी, उस पर हम नहीं बैठ पाए या उसी के लिए भी झगड़ा कर सकते हैं किसी दूसरे से कि भाई मुझे इसने नीचे उतारा, मैंने उसको नीचे खींच लिया, दोनों ही आपस में झगड़ते रहे, इतनी देर में चार बसें निकल जाएंगी लेकिन वो दोनों वहीं झगड़ते रहेंगे खड़े खड़े। तो अगर आ रही है बस, फिर दूसरी आएगी, तीसरी आएगी, चौथी आएगी। तो जीवन में अगर आप इसको यथार्थ मानोगे तो फिर व्यवहार में क्लेश होगा। जीवन में जितना भी अव्यवहार्य के अर्थ को देखोगे, अव्यवहार्य के अर्थ केवल इतना ही है कि संसार तो चलेगा लेकिन क्लेश कम हो जाएंगे। व्यवहार में क्लेश तब होता है, झगड़ा तब होता है जब व्यवहार को हम सत्य मान लेते। सत्य मान लेंगे तो द्वैत होगा, और अगर हम उसको सत्य नहीं मान के केवल व्यवहार रूप के लिए चलाने के लिए संसार में, व्यवहार का मतलब है लीला, व्यवहार का मतलब है नाटक, केवल उस दृष्टि से ही उसको देखेंगे तो फिर झगड़े नहीं। एक बहुत अच्छे ईसाई पादरी हुए, वो हर रविवार को जैसे इनके होता है ईसाई धर्म में चर्च में सरमन, चर्च में जाके प्रवचन करना, बाइबल को पढ़ के सुनाना, ये करना, तो वो अपने जीवन की एक घटना का उल्लेख करते हैं। वो जोसेफ पाल उनका नाम था, वो एक बार कहीं रविवार वाले दिन बाइबल पर प्रवचन करने के लिए किसी गांव में जा रहे थे, दूर जाना था। तो वो कहते हैं कि सुबह का समय था, उस समय 5 बजे थे सुबह के, और वो ट्रेन में बैठे, जिस डिब्बे में वो बैठे उस डिब्बे में थोड़े लोग थे सुबह सुबह, लेकिन जितने भी लोग बैठे हुए थे वो सब के सब, कोई तो आंखें बंद करके जैसे ध्यान में बैठा हुआ हो, कोई बाइबल पढ़ रहा था, और कोई हाथ उठाए हुए प्रेयर दुआ की मुद्रा में था, जैसे भगवान से प्रार्थना कर रहा हो, पूर्ण रूपेण शांति और डब्बे बिल्कुल उसमें। वो भी जाके अपनी सीट पर बैठ, वो कहते हैं अगले स्टेशन पर गाड़ी रुकी, वो उस शहर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल था और उस हॉस्पिटल के नाम पर ही वो स्टेशन था। जाकर वहां गाड़ी रुकी जब, तो गाड़ी में एक आदमी और 3 बच्चे वो उसी डिब्बे में आए। आदमी तो आते ही एक सीट पर बैठ के उसने आंखें बंद कर ली और अखबार आगे रख लिया मुंह, और बच्चे जो थे उसके तीन, वो बच्चे उसके तीन के तीन बच्चे, वो कहता है कि 4 साल की उम्र से 9 साल की उम्र के बीच बीच के थे बच्चे उसके। धीरे धीरे डिब्बे में शोर मचाने लगे, दौड़ते हुए कभी इधर चले जाएं, कभी उधर चले जाएं, कभी कुछ करें। फिर उन्होंने शोर इतना मचाना शुरू किया कि वो पादरी कहते मेरे से अब बर्दाश्त ना हो, कि सारे लोग तो ऐसे बैठे हैं और ये वो कर रहा है। फिर उसके बच्चे क्या करें, कभी किसी का इधर से पर्स उठा के दूसरे की चेयर पर रख दें और कि उसका उठा के उधर ले जाएं, किसी का चश्मा उठा के इधर ले जाएं, कभी कुछ और उद्धम मचाएं खूब। तो वो पादरी कहता है कि जब मेरे से नहीं रहा गया बिल्कुल, तो वो उठ के उसके पास गया, पास जाके उसको कहने लगा कि श्रीमान जी, क्या आप इन बच्चों का कुछ करोगे?
3: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।

ॐ प्रतिसरियाय नमः। ॐ परावरेशरुद्राय नमः। ॐ भवाय नमः। ॐ अलङ्घ्यशक्तये नमः। ॐ इन्द्रध्वंसनिधीशाय

ॐ दक्षिणाशकराय नमः ॐ सहस्रशिरसे नमः ॐ जयरूपाय नमः ॐ सहस्रचरणाय नमः ॐ योगिहृत्कञ्जवासिने नमः ॐ सद्योजाताय नमः ॐ वन्द्याय नमः ॐ सर्वदेवमयाय

ॐ अणिमादिगुणेशाय नमः। ॐ पञ्चब्रह्ममयाय नमः। ॐ पुरातनाय नमः। ॐ शुद्धाय नमः। ॐ बलप्रमथनाय

ओम भूताय नमः, ओम पंचभूतात्मने नमः, ओम अनिर्विण्णाय नमः, ओम तथ्याय नमः, ओम पापनाशकराय नमः, ओम विश्वतश्चक्षुषे नमः, ओम मंत्रिणे नमः, ओम अनंतरूपिणे नमः, ओम सिद्धसाधकरूपाय नमः, ओम मेदिनीरूपिणे नमः, ओम अघण्यप्रतापाय नमः, ओम सुधाहस्ताय नमः, ओम श्रीवल्लभाय नमः, ओम ईध्र्याय नमः, ओम मधुराय नमः, ओम उपाधिरहिताय नमः, ओम सुकृतराशये नमः, ओम मुनीश्वराय नमः, ओम शिवानंदाय नमः, ओम रिपुघ्नाय नमः, ओम तेजोराशये नमः, ओम अनुत्तमाय नमः, ओम चतुर्मूर्ति वपुस्थाय नमः, ओम बुद्धीन्द्रियात्मने नमः, ओम उपद्रवहराय नमः, ओम प्रियसंदर्शनाय नमः, ओम भूतनाथाय नमः, ओम मूलाय नमः, ओम वीतरागाय नमः, ओम नैष्कर्म्याय नमः, ओम विरूपाय नमः, ओम षट्चक्राय नमः, ओम विशुद्धये नमः, ओम कूलेशाय नमः, ओम अवनिभर्त्रे नमः।

ब्रह्मज्ञाय नमः, ॐ ध्यानरूपाय नमः, ॐ शाश्वतैश्वर्यविभवाय नमः, ॐ प्राणेश्वराय नमः, ॐ सर्वशक्तिधराय नमः, ॐ धर्माधाराय नमः, ॐ धन्याय नमः, ॐ पुष्कलाय नमः, ॐ वरिष्ठाय नमः।

हिरण्यगर्भपुत्राणां प्राणसंरक्षणाय नमः। ॐ दुर्वाससे नमः। ॐ षड्विकाररहिताय नमः। ॐ देहार्धकान्ताय नमः। ॐ षडूर्मिरहिताय नमः। ॐ प्रकृत्यै नमः। ॐ भवनाशाय नमः। ॐ ताम्राय नमः। ॐ परमेष्ठिने नमः। ॐ अनन्तकोटिब्रह्माण्डनाय

ॐ दिवो दासेश्वराय नमः, ॐ नागेश्वराय नमः, ॐ न्यायाय नमः, ॐ न्यायनिर्वाहकाय नमः, ॐ शरण्याय नमः, ॐ सुपात्राय नमः, ॐ कालचक्रप्रवर्तिने नमः, ॐ विचक्षणाय नमः।

ॐ वरुधिने नमः ॐ सोमाय नमः ॐ कूप्याय नमः ॐ पातालवासिने नमः ॐ ताराधिनाथाय नमः ॐ वागीशाय नमः ॐ सदाचाराय नमः ॐ गौराय नमः ॐ स्वायुधाय नमः ॐ संसारमोचकाय नमः ॐ वर्णिने नमः ॐ लिङ्गरूपिणे नमः ॐ सच्चिदानन्दरूपाय नमः ॐ पापराशिहराय नमः ॐ अतर्क्याय नमः ॐ अप्रमेयाय नमः ॐ प्रमाणाय नमः ॐ कलिग्रासाय नमः ॐ भक्तानां भुक्तिमुक्तिप्रदायिने नमः ॐ गजारये नमः ॐ विदेहाय नमः ॐ त्रिलिङ्गरहिताय नमः ॐ अचिन्त्यशक्तये नमः ॐ अलङ्ग्यशासनाय नमः ॐ अच्युताय नमः ॐ राधाधिराजाय नमः ॐ चैतन्यविषयाय नमः ॐ शुद्धात्मने नमः ॐ ब्रह्मज्योतिषे नमः ॐ स्वस्तिदाय नमः ॐ मयोभवे नमः ॐ दुर्ज्ञेयसामर्थ्याय नमः ॐ यज्वने नमः ॐ चक्रेश्वराय नमः ॐ रुचये नमः ॐ नक्षत्रमालिने नमः ॐ अनर्थनाशनाय नमः ॐ भस्मलेपकराय नमः ॐ सदानन्दाय नमः ॐ विदुषे नमः ॐ सुगुणाय नमः ॐ विरोधिने नमः ॐ दुर्गमाय नमः ॐ शुभाङ्गाय नमः ॐ मृगव्याधाय नमः ॐ प्रियाय नमः ॐ धर्मधाम्ने नमः ॐ प्रयोगाय नमः ॐ विभागिने नमः ॐ नाद्याय नमः ॐ अमृतपानाय नमः ॐ सोमपाय नमः ॐ तपस्विने नमः ॐ विचित्रवेशाय नमः ॐ पुष्टिसंवर्धनाय नमः ॐ चिरन्तनाय नमः ॐ धनुषे नमः ॐ वृक्षाणां पतये नमः ॐ निर्मायाय नमः ॐ अग्रगण्याय नमः ॐ व्योमातीताय नमः ॐ संवत्सराय नमः ॐ लोप्याय नमः ॐ स्थानदाय नमः ॐ स्तविष्णवे नमः ॐ व्यवसायफलान्ताय नमः ॐ महाकर्तृप्रियाय नमः ॐ गुणत्रयस्वरूपाय नमः ॐ सिद्धिस्वरूपिणे नमः ॐ स्वरूपरूपरूपाय नमः ॐ स्वेच्छाय नमः ॐ पूरुषाय नमः ॐ कालात्पराय नमः ॐ वेद्याय नमः ॐ ब्रह्माण्डरूपिणे नमः ॐ अनित्यनित्यरूपाय नमः ॐ तदन्तर्वर्तिने नमः ॐ तीर्थ्याय नमः ॐ कूल्याय नमः ॐ पूर्णाय नमः ॐ वटवे नमः ॐ पञ्चतन्मात्ररूपाय नमः ॐ पञ्चकर्मेन्द्रियात्मने नमः ॐ विशृङ्खलाय नमः ॐ दर्पाय नमः ॐ विषयात्मने नमः ॐ अनवद्याय नमः ॐ शास्त्राय नमः ॐ स्वतन्त्राय नमः ॐ अमृताय नमः ॐ प्रौढाय नमः ॐ प्रज्ञाय नमः ॐ योगारूढाय नमः ॐ मन्त्रज्ञाय नमः ॐ प्रगल्भाय नमः ॐ प्रदीपविमलाय नमः ॐ विश्वावासाय नमः ॐ दक्षाय नमः ॐ वेदनिश्वासिताय नमः ॐ यज्ञाङ्गाय नमः ॐ सुवीराय नमः ॐ नागचूडाय नमः ॐ व्याघ्राय नमः ॐ बाणहस्ताय नमः ॐ स्कन्दाय नमः ॐ दक्षिणे नमः ॐ क्षेत्रज्ञाय नमः ॐ रहस्याय नमः ॐ स्वस्थानाय नमः ॐ वरीयसे नमः ॐ गहनाय नमः ॐ विरामाय नमः ॐ सिद्धान्ताय नमः ॐ महीधराय नमः ॐ गृह्याय नमः ॐ वटवृक्षाय नमः ॐ ज्ञानदीपाय नमः ॐ दुर्गाय नमः ॐ सिद्धान्तै निश्चिताय नमः ॐ श्रीमते नमः ॐ मुक्तिबीजाय नमः ॐ कुशलाय नमः ॐ विवासिने नमः ॐ प्रेरक्षाय नमः ॐ विशोकाय नमः ॐ हविर्धानाय नमः ॐ गम्भीराय नमः ॐ सहायाय नमः ॐ भोजनाय नमः ॐ सुभोगिने नमः ॐ महायज्ञाय नमः ॐ तीक्ष्णाय नमः ॐ भूतचारिणे नमः ॐ प्रतिष्ठिताय नमः ॐ महोत्साहाय नमः ॐ परमार्थाय नमः ॐ शिशवे नमः ॐ प्रांशवे नमः ॐ कपालिने नमः ॐ सहजाय गृहस्थाय नमः ॐ सन्ध्यानाथाय नमः ॐ विष्णवे नमः ॐ सद्भिस्सम्भूजिताय नमः ॐ वितलासुरघातिने नमः ॐ जनाधिपाय नमः ॐ योग्याय नमः ॐ कामेशाय नमः ॐ किरीटिने नमः ॐ अमोघविक्रमाय नमः ॐ नग्नाय नमः ॐ दलघातिने नमः ॐ सङ्ग्रामाय नमः ॐ नरेशाय नमः
ओम श्रुति भस्मने नमः, ओम भूति प्रियाय नमः, ओम भूमने नमः, ओम सेनाय नमः, ओम चतुराय नमः, ओम मनुष्य बाह्य गतये नमः, ओम कृतज्ञाय नमः, ओम शिखंडिने नमः, ओम निर्लेपाय नमः, ओम जटार्द्राय नमः, ओम महाकालाय नमः, ओम मेरवे नमः, ओम विरूपरूपाय नमः, ओम शक्तिगम्याय नमः, ओम सर्वाय नमः, ओम सदसत्सत्याय नमः, ओम सुव्रताय नमः, ओम भक्तप्रियाय नमः, ओम श्वेतरक्षापराय नमः, ओम सुकुमार महापापहराय नमः, ओम रथिने नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम धनाध्यक्षाय नमः, ओम सिद्धये नमः, ओम महाभूताय नमः, ओम कल्पाय नमः, ओम कल्पनारहिताय नमः, ओम ख्याताय नमः, ओम जितविश्वासाय नमः, ओम गोकर्णाय नमः, ओम शुचारवे नमः, ओम श्रोत्रियाय नमः, ओम वदान्याय नमः, ओम दुर्लभाय नमः, ओम कुटुंबिने नमः, ओम विरजाय नमः, ओम सुगंधाय नमः, ओम विश्वंभराय नमः, ओम भवातीताय नमः, ओम तिष्याय नमः, ओम सामगाय नमः, ओम अद्वैताय नमः, ओम द्वितीयाय नमः, ओम कल्पराजाय नमः, ओम भोगिने नमः, ओम चिन्मयाय नमः, ओम शुक्लज्योतिषे नमः, ओम क्षेत्रगाय नमः, ओम सर्वभोग समृद्धाय नमः, ओम सांपरायाय नमः, ओम स्वप्रकाशाय नमः, ओम स्वच्छंदाय नमः, ओम सुतंतवे नमः, ओम सर्वज्ञमूर्तये नमः, ओम गुह्येशाय नमः, ओम सुशांताय नमः, ओम शारदाय नमः, ओम सुशीलाय नमः, ओम कौशिकाय नमः, ओम धनाय नमः, ओम अभिरामाय नमः, ओम तत्वाय नमः, ओम व्यालकल्पाय नमः, ओम अरिष्टमथनाय नमः, ओम सुप्रतीकाय नमः, ओम आशवे नमः, ओम ब्रह्मगर्भाय नमः, ओम वरुणाय नमः, ओम अद्रये नमः, ओम कालाग्निरुद्राय नमः, ओम श्यामाय नमः, ओम सुजनाय नमः, ओम अहिर्बुद्ध्याय नमः, ओम जाराय नमः, ओम दुष्टानां पतये नमः, ओम समयनाथाय नमः, ओम समयाय नमः, ओम गुहाय नमः, ओम दुर्लंघ्याय नमः, ओम छंदस्साराय नमः, ओम दंष्ट्रिणे नमः, ओम ज्योतिर्लिंगाय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम जगतां हितकारिणे नमः, ओम कारुण्य निधये नमः, ओम श्लोकाय नमः, ओम जयशालिने नमः, ओम ज्ञानोदयाय नमः, ओम बीजाय नमः, ओम जगद्विभ्रमहेतवे नमः, ओम अवधूताय नमः, ओम शिष्टाय नमः, ओम छंदसांपतये नमः, ओम फेन्याय नमः, ओम गुह्याय नमः, ओम सर्वबंधविमोचिने नमः, ओम उदारकीर्तये नमः, ओम शाश्वत प्रसन्नवदनाय नमः, ओम वसवे नमः, ओम वेदकाराय नमः, ओम ब्राजिष्णुजिष्णवे नमः, ओम चक्रिणे नमः, ओम देवदेवाय नमः, ओम गदाहस्ताय नमः, ओम पुत्रिणे नमः, ओम पारिजात सुपुष्पाय नमः, ओम गणाधिपाय नमः, ओम सर्वशाखाधिपतये नमः, ओम प्रजनेशाय नमः, ओम सूक्ष्मप्रमाणभूताय नमः, ओम सुरपार्श्वगताय नमः, ओम अशरीरशरीराय नमः, ओम अपगल्भाय नमः, ओम सुकेशाय नमः, ओम सुपुष्पाय नमः, ओम श्रुतये नमः, ओम पुष्पमालिने नमः, ओम मुनिध्येयाय नमः, ओम मुनये नमः, ओम बीजसंस्थमरीचये नमः, ओम चामुंडाजनकाय नमः, ओम कृत्तिवाससे नमः, ओम युक्तकेशाय नमः, ओम योग्याय नमः, ओम धर्मपीठाय नमः, ओम महावीर्याय नमः, ओम दीप्ताय नमः, ओम बुद्धाय नमः, ओम अशनये नमः, ओम विशिष्टेष्ठाय नमः, ओम सेनान्ये नमः, ओम द्विपदे नमः, ओम कारणाय नमः, ओम भगवते नमः, ओम बाणधर्पहराय नमः, ओम अतीन्द्रियाय नमः, ओम रम्याय नमः, ओम जनानंदकराय नमः, ओम सदाशिवाय नमः, ओम सौम्याय नमः, ओम चिंत्याय नमः, ओम शशिमौलिने नमः, ओम जातुकर्ण्याय नमः, ओम सूर्याध्यक्षाय नमः, ओम ज्योतिषे नमः, ओम कुंडलीशस्य वरदाय नमः, ओम अभयाय नमः, ओम वसंताय नमः, ओम सुरभये नमः, ओम जयारिमथनाय नमः, ओम प्रेम्णे नमः, ओम पुरंजयाय नमः, ओम पृषदश्वाय नमः, ओम रोचिष्णवे नमः, ओम असुरजिते नमः, ओम श्वेतपीताय नमः, ओम चंचरीकाय नमः, ओम तमिश्रमतनाय नमः, ओम प्रमाथिने नमः, ओम निदाघाय नमः, ओम चित्रगर्भाय नमः, ओम शिवालयाय नमः, ओम स्तुत्याय नमः, ओम तीर्थदेवाय नमः,
ఓం పత్తీనాం పతయే నమః, ఓం విచిత్రశక్తయే నమః, ఓం నిస్తులరూపాయ నమః, ఓం సవిత్రే నమః, ఓం తపసే నమః, ఓం అహంకారస్వరూపాయ నమః, ఓం మేధాధిపతయే నమః, ఓం అపారాయ నమః, ఓం తత్వవిదే నమః, ఓం క్షయద్వీరాయ నమః, ఓం పంచాస్యాయ నమః, ఓం అగ్రగణ్యాయ నమః, ఓం విష్ణుప్రాణేశ్వరాయ నమః, ఓం అగోచరాయ నమః, ఓం యామ్యాయ నమః, ఓం క్షేమ్యాయ నమః, ఓం వడవాగ్నయే నమః, ఓం విక్రమాయ నమః, ఓం స్వతంత్రాయ నమః, ఓం స్వతంత్రగతయే నమః, ఓం అనావృతాయ నమః, ఓం ముక్తాయ నమః, ఓం మాతృకాపతయే నమః, ఓం బీజకోశాయ నమః, ఓం దివ్యానందాయ నమః, ఓం ముక్తయే నమః, ఓం విశ్వదేవాయ నమః, ఓం శాంతరాగాయ నమః, ఓం సుదేవాయ నమః, ఓం హేమగర్భాయ నమః, ఓం అనాద్యంతాయ నమః, ఓం చండాయ మనోనాథాయ నమః, ఓం జ్ఞానస్కందాయ నమః, ఓం తుష్టాయ నమః, ఓం కపిలాయ మహర్షయే నమః, ఓం త్రికాగ్నికాలాయ నమః, ఓం దేవసింహాయ నమః, ఓం మణిపూరాయ నమః, ఓం చతుర్వేదాయ నమః, ఓం స్వరూపాణాం స్వభావాయ నమః, ఓం అంతర్యాగాయ నమః, ఓం శ్లోకాయ నమః, ఓం వన్యాయ నమః, ఓం మహాధర్మాయ నమః, ఓం ప్రసన్నాయ నమః, ఓం సర్వాత్మజ్యోతిషే నమః, ఓం

0: इति श्री पद्मे पुराणे पञ्चपञ्चाशत्साहस्रिकायां संहितायां उत्तरभागे बिल्वकेश्वर महात्म्ये श्रीकृष्ण मार्कण्डेय संवादे वेदसाराख्यं शिवसहस्रनाम स्तोत्रं सम्पूर्णम्।
1: ओम नमः शिवाय।
2: यू आर लिसनिंग टू shaivam.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम shaivam.org।
1: ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

0: Om Namah Shivaya. Dear users of Shaivam.org, we are very much delighted to let you all know that due to the shower of grace from Almighty Lord Shiva and the continuous support from esteemed users like you, our Shaivam.org website had passed 26 successful years of service in the world of Shaivam, and it is all set to sustain the same with lot more new features in the forthcoming years as well. Adding to that, like one more diamond embedded to the golden crown, we are pleased to inform the existence of a new radio, Shiva Tattvam, specifically designed to telecast Shaiva discourses. It's a humble request to you to listen that as well and extend your support. Now you can listen all the Shaiva discourses being scheduled in Shaiva Lahari and Thirunariya Tamilosi radios in Shiva Tattvam radio only. Thanks for your esteemed support. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shiva Mahimna Stotra in Hindi, presented by Swami Sri Dharmanandiji. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: Us dhir namak bhil apne saathiyon ke saath ghumte ghumte bahut dur nikal pada. ऐसे जगह गया जहां पर कि कोई पानी की व्यवस्था नहीं थी. परेशान हो गया, बेहोश पड़ गया. उसका साथी उसको साहस दिया, तुम यहीं बैठो, मैं पानी ढूंढ के आता हूं. वहां से वह 1.5 किलोमीटर ऊपर गया तो एक झरना बह रहा था, और झरने के बाद बहुत प्राचीन एक शिवलिंग था. आकर अपने साथी को बताया, उसको उठा के वहां ले गया, झरने का पानी पिया, बैठा, उससे बहुत आनंद आया. सामने देखा एक शिवलिंग है, शिव का पिंड है. वहां जो है पूछा कि इसकी पूजा कैसे होती है, तो उसके साथी ने कहा कि मैं एक बार यहां भटकते भटकते पहुंचा था तो कोई आदमी अपने कंधे पर उसकी धागा लटक रही थी, और वह एक घड़े में जल लाया और जल ला करके इस पर चढ़ा दिया. इसके बाद नया नया बिल पत्र रखा, फूल रखा, और अपने हाथ से भोजन कराया. इसके बाद आरती उतार के चला गया. ऐसा सुनने के बाद वह धीर नामक भील भगवान शंकर की पूजा में वैसे लग गया. पर उसके पास कोई बर्तन नहीं, कोई साधन नहीं, तो उसने सोचा कि मैं पानी कैसे लाऊं. उस भील ने अपने मुख में झरने का पानी भर लिया.

इसके बाद वह खरगोश के पके हुए मांस को खिलाता। इस प्रकार से 6 दिन तक पूजा किया। भगवान शंकर उसके शुद्ध भक्ति से बहुत प्रसन्न हो गए और भगवान शंकर उसके उस मांस को हर दिन ग्रहण करते थे। पुजारी को बहुत क्रोध हुआ कि मैं तो हर दिन आता हूँ, सफाई करता हूँ, अच्छी प्रकार पूजा करता हूँ, पर न जाने कौन सा ऐसा दुष्ट है कि हमारे जाने के बाद वह अशुद्ध कर देता है। भगवान शंकर से प्रार्थना किया कि आप सर्वज्ञ हैं, आप उसको नष्ट कर दें जो हमारे पूजा में बाधा उपस्थित करता है, जो आपके स्थान को अपवित्र करता है। भगवान शंकर ने पुजारी को सपना दिया, सपने में समझाया तुझसे भी वह श्रेष्ठ पुजारी है, वह मेरा प्रिय भक्त है, तुझे देखना हो तो कल तू झाड़ी में छिप कर देखना वह रात्रि को कैसे पूजा करता है। वह पुजारी ऐसा ही किया, रात्रि को छिप गया झाड़ी में और देखता है कि भील आता है और अपने पैरों से निर्माल्य को, जो पुजारी ने निर्माल्य चढ़ाया था, उस निर्माल्य को पैरों से हटाया और अपने मुख में जो जल भरा था उसको भगवान शंकर के पिंड पर छोड़ दिया और सिर को हिला करके पुष्प चढ़ा दिया जो सिर में लगाए हुए थे, फूल गिर जाते। इसके बाद वह पके पकाए उस खरगोश के मांस को अपने हाथों से भगवान को खिलाता था। पर उस दिन जब भगवान शंकर को खरगोश का मांस खिलाने लगा तो भगवान शंकर मुख ही न खोले और रोने लगा कि आपने जो है इतने दिनों तक जो है हमारे इस नैवेद्य को तो ग्रहण किया, आज आप ग्रहण क्यों नहीं कर रहे? आज मैं बहुत थक गया हूं, दूर जंगल में चला गया और बड़े मुश्किल से खरगोश मिला, आप नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा, हट करके बैठ गया। इतने में क्या देखता है कि भगवान शंकर के बाएं आंख से रक्त की धारा बहने लगी। बहुत दुखी हो गया, उसने कहा कि रक्त धारा कैसे बह रही है, कहीं किसी ने चोट पहुंचा दिया, कोई रोग हो गया। वह रोने लगा, अंत में कहा कि कोई औषधि करनी चाहिए, अपने साथी को भेजा और जंगल से एक जड़ी बूटी लाया, उसके रस को निचोड़ करके आंख पर लगाया, पर लगाने से और रक्त धारा तेज हो गई। उसने सोचा कि इसका उपाय क्या हो सकता है, तो उसने खुद अपने बाण से अपने आंख को निकालकर लगा दिया। लगाते ही रक्त धारा बंद हो गई। बहुत खुश हुआ कि भगवान शंकर की आंख ठीक हो गई, मेरी उपासना सफल है। पर इतने में क्या देखता है कि दाहिने नेत्र से रक्त धारा प्रवाहित हो गई। उसने सोचा कि इसमें भी लगता है कोई बीमारी है, परंतु दाहिने आंख को लगाऊंगा तो मैं देखूंगा कैसे। उसने विचार करके अपने दाहिने पैर के अंगूठे से, जहां से भगवान शंकर की आंख से धारा प्रवाहित हो रही थी, वहां रख लिया चिन्ह के लिए, क्योंकि एक आंख तो मेरी चली गई, दूसरी चली जाएगी तो मैं कैसे आंख लगाऊंगा। ऐसा सोच करके अपने दाहिने पैर के अंगूठे को भगवान की आंख के सामने रखी और उस आंख को जैसे निकालने जा रहा था, साक्षात भगवान शंकर ने दर्शन दिया और कहा कि मैं तेरी इस भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं। पुजारी भी आया और पुजारी ने भगवान से क्षमा याचना किया, क्योंकि पुजारी ने भगवान से कहा था कि आप इस भक्त का सर्वनाश कर दो जो आपके स्थान को पवित्र करता है। तो देखो, भगवान भक्ति प्रिय है, उनके लिए न कुछ खाद्य है न अखाद्य है, वह तो हमारी भावना को देखते हैं। इसी कथानक को भगवान शंकराचार्य ने श्लोकबद्ध भी किया है, ये तमिल भाषा में अंकित है, शिव भक्त चरित्रम नामक संस्कृत में पुस्तक है, उसका अनुवाद तमिल में है, हिंदी में तो नहीं है। तो भगवान शंकर संसार के भय को भंग करने वाले हैं। ये भांग धतूरा तो ठीक है, श्रद्धा से निवेदन करें तो, पर उसके व्यसनी नहीं।
अपि

0: शीतलाज्ञा, यह जो विकार है, विकार मतलब हलाहल विष का, वह भी भगवान के शोभा को बढ़ा रहा है। यह तो है, हमने आपको शब्दार्थ बदलाया, अब देख लीजिए इसके वाक्यार्थ को। अकांड ब्रह्मांड छह चकित देवासुर कृपा, अकांड का अर्थ है अश्रम में प्रलय होना, समय से कोई काम हो तो किसी को बेचैनी नहीं होती, परेशानी नहीं होती है। जैसे कि वर्षा समय से हो तो सभी प्रसन्न होते हैं, बरसात के दिन में भी यदि फसल न हो तो लोग क्या बोलते हैं, अकाल पड़ गया। अकाल पड़ गया मतलब काल तो तब भी है, परंतु बरसात के दिनों में हरा भरा होना चाहिए, फसल होनी चाहिए, वैसा न होने से कहते हैं कि अकाल पड़ गया। जेठ के महीने में चारों तरफ सूखा होता है पर कोई नहीं कहता है कि अकाल पड़ गया, क्योंकि वह जेठ का महीना सूखा के लिए ही है। ऐसे जिस समय प्रलय होना चाहिए उस समय प्रलय हो तब तो यह उचित है, परंतु सृष्टि काल में अचानक जो है ब्रह्मांड के क्षय होने का समय उपस्थित हो गया, जैसे दिन रात प्रातः काल से लेकर के सायंकाल 6 बजे तक सूर्य का की रोशनी रहती है, 6 बजे के बाद पुनः सूर्यास्त हो जाता है तो किसी को हैरानी नहीं होती है, पर किसी दिन यदि 12 बजे ही अंधेरा छा जाए तो लोग क्या कहते हैं, आज सूर्य ग्रहण हो गया, सूर्य में ग्रहण लग गया। और सूर्य ग्रहण के दिन आप क्या करते हैं सबको पता है, उस समय सब कुछ छोड़ करके पवित्र नदी में स्नान करते हैं, जितनी भी नदियां होती हैं तालाब होते उस समय उनको गंगा के समान माना गया है, तुरंत स्नान करके ग्रहण के समय आप भगवान का जप करते हैं, प्रार्थना करते हैं, इसके पूर्व 12 घंटे का उपवास भी होता है। हर दिन सूर्यास्त हो रहा था 6 बजे तो आपने कुछ नहीं मनाया, कोई हैरानी नहीं हुई, परंतु एक दिन अचानक जो है 12 बजे सूर्यास्त हो गया, 2-4 घंटे के लिए क्यों न हो तो ग्रहण लग जाता है। ऐसे ही ब्रह्मा जी के आदेश से ब्रह्मा जी ने घोषणा किया था कि चाहे देवता हो या असुर, यदि दोनों मिलकर समुद्र का मंथन करें, मंथन करने से अमृत निकलेगा और अमृत पान के बाद सभी अमर हो जाएंगे। इस ब्रह्मा जी के कथन को सुनकर दोनों ने आपस में मैत्री की, हालांकि मैत्री संभव नहीं थी, परंतु स्वार्थ के कारण देवताओं ने बलि के पास जाकर प्रार्थना किया कि अकेले आप भी समुद्र का मंथन नहीं कर सकते, हम भी नहीं कर सकते, इसलिए हम दोनों मिलकर समुद्र का मंथन करें और जो चीज प्राप्त होगी उसको आपस में बंटवारा कर लेंगे। बलि भी तैयार हो गए, देवता असुर मिलकर समुद्र मंथन प्रारंभ किए। मंदराचल को तो मथानी बनाया, वासुकी मथाने की रस्सी बन गई। मंथन प्रारंभ हो गया, पर मंथन के बाद सर्वप्रथम हलाहल विष निकला। हलाहल विष निकलते ही सभी बहुत परेशान हुए, सभी बेचैन हो गए, मूर्छित हो गए। जो कुछ देवता बचे वो भगवान विष्णु के पास जाकर प्रार्थना किए, त्राहिमाम त्राहिमाम। भगवान विष्णु ने कहा कि इस हलाहल विष का संहार केवल भगवान शंकर ही कर सकते हैं। भगवान विष्णु देवताओं को लेकर कैलाश जाते हैं, वहां जाकर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप संहार के देवता हैं, आप इस हलाहल का उपसंहार कर लीजिए, अन्यथा अकांड ब्रह्मांड क्षय हो जाएगा, असमय में ब्रह्मांड का नाश होगा, अभी ब्रह्मांड के प्रलय का समय नहीं आया है। भगवान शंकर बाजू में बैठी थी पार्वती जी, उधर इशारा किए। पार्वती जी ने कहा, ये देवता लोग बड़े स्वार्थी हैं, स्वार्थ आया तब तो सीधे कैलाश आए, और कैलाश आने के बाद आपको कहते कि बीज पी लो, यदि आप बीज पी लेंगे तो देवता असुर तो बच जाएंगे, ब्रह्मांड बच जाएगा, पर मैं तो विधवा हो जाऊंगी। इसलिए पार्वती ने सीधा मना कर दिया, मत पीजिए, इशारा से मना कर दिया। भगवान विष्णु कह रहे, महाराज आप पी लीजिए, कृपा कीजिए, जल्दी कीजिए, लोक में त्राही त्राही मचा हुआ है, अब विलंब मत कीजिए। जब इधर देखते हैं तो पार्वती जी मना कर रही हैं, उधर देखते हैं तो कह रहे, महाराज पी लीजिए। भगवान शंकर ने क्या किया, कुछ हलाहल विष को वाम हस्त से ग्रहण कर लिया और अपने गले में ही रख लिया। पान शब्द का संस्कृत में अर्थ होता है कि गला अधो नयन व्यापार का नाम है पान। गले में जो छिद्र है उससे अधमल्ल नीचे ले जाने को पान कहते हैं। तो भगवान विष्णु की बात रख ली, उस विष को गला के अंदर तो रख लिया, और पार्वती ने कहा था मत पीजिए तो उसको नीचे नहीं उतारा, गले में रख लिया हलाल विष को, जिससे कि देवताओं के असुरों की रक्षा हुई, अकांड प्रलय से बचाव हो गया। ऐसे हमारे जीवन में जब भी हम कुछ करते हैं, कोई भी काम करें, तो निश्चित ही हलाहल विष, हलाहल विष का मतलब है दुख। ये जो हमारे जीवन का दुख है, यह दुख ही समझो हलाहल विष है। बंबई में सारे लोग आते हैं धन कमाने के लिए, परंतु अभी 27-28 नवंबर को हलाल विष निकला। सभी आए थे धन कमाने, अमन चैन से जीवन यापन करने, परंतु ऐसा हलाल विष निकला कि जो बम के विस्फोट से पूरी बंबई गूंज गई, त्राही त्राही मच गई। तो हमारे जीवन में भी ये देवासुर संग्राम चलता है। अमृत तो बाद में उपलब्ध होगा, पहले हलाहल ही दुख ही आता है, और जब दुख आता है तब जाकर वैराग्य होता है, और जब वैराग्य होता है तो आप इतिहास या पुराण या वेद उपनिषद सब कुछ देख लीजिए, सीधा उत्तर जाता है मनुष्य, दक्षिण भारत की यात्रा कोई नहीं करता है। भगवान शंकराचार्य, भगवान निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुज, रामानंदाचार्य, ये सारे आचार्य उत्पन्न हुए दक्षिण भारत में, वल्लभ भी, निम्बारक भी, और अपने शंकराचार्य भगवान भी सभी, परंतु यात्रा किया उत्तर भारत की, कैलाश की, हिमालय की। तो जब भी किसी को विषाद होता है, दुख होता है, हलाल से परेशान होता है, हम लोग किसी दिन यदि जरा सा छोले भटूरे कुछ खा लेना गर्म चीज, तो रात को सोने के बाद देखो जब पित्त बनता है तो कैसे जलन होती है, परेशान हो जाते हैं, तो वह तो हलाहल विष था। जब हलाहल विष रूपी दुख आए तो हमें भी यात्रा कहां करनी चाहिए, विचार कर लो, कैलाश की, क्योंकि यत्र शंभो नित्यम राजते, जहां पर भगवान शंकर हमेशा उमा के साथ विराजमान रहते हैं, वह है कैलाश। परंतु स्वनाम धन्य प्रेमपुरी जी महाराज, उस कैलाश को आपको यहीं बसा दिया है, ये दूर नहीं है। कैलाश शब्द का अर्थ है कई गई शब्दे, ये धातु है, कई और गई दो धातु है, इस शब्द अर्थ में है, कई गई शब्दे धातु है, और रलयोर अभेद रकार लकार का अभेद है। तो कई मतलब कि शब्दे, शब्दे का अर्थ है शब्दात्मक जो वेद है, जो उपनिषद है, जो भागवत है, और लास का अर्थ है रास, रलयोर अभेद है ना, और रस एव राश स्वार्थिक प्रत्यय है, और रस शब्द का अर्थ है आत्मज्ञान, रसो वैश्य उपनिषद में आता है, रसो वैश्य जीवन का रस सार तो आत्मा ही है। तो जब हम शब्दात्मक वेद का, वेदांत का, भागवत का, रामायण का जब श्रवण करते हैं स्वाध्याय के द्वारा या प्रवचन के द्वारा, तो साक्षात भगवान शंकर की जो साक्षात आत्मा है उनकी अनुभूति होती है। तो जब भी आपको अपने घर में, व्यापार में, बिजनेस में, धंधा में ये हलाहल 20 रूपये दुख हो ना, तो आप कहाँ यात्रा करना है? प्रेमपुरी, क्योंकि यही कैलाश है। और इस कैलाश में यात्रा करेंगे तो निश्चित ही आपको समाधान मिलेगा। जब देवताओं को, असुरों को समाधान नहीं मिला तो कैलाश पर गए, वहां पर जाते भगवान शंकर ने समाधान किया। इसके बाद जब आप मंथन करते जाएंगे तो फिर क्रम से लक्ष्मी भी मिलेगी, एरावत हाथी भी आएगा और अंत में अमृत कलश भी उपलब्ध होगा। लक्ष्मी बोलते धन को, एरावत हाथी मन लगे कि जो आप गाड़ी चाहते हैं ना, हमारे चलने के लिए अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, वाहन होना चाहिए, वह भी उपलब्ध होगा। परंतु जब हमारे जीवन में हलाहल रूपी विषाद आए तो उस विषाद को हम संवाद में परिणत करें। जब संवाद में परिणत करेंगे तब जा करके गीता का प्रसाद, भागवत का प्रसाद उपलब्ध होगा। कभी भी अमृत का स्यंदन विषाद से ही होता है। जैसे बर्फ बहुत कठोर है, वह कठोर बर्फ भी अग्नि से पिघलता है। इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज के महात्म्य में कहा गया है, सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। सुख शब्द का अर्थ है शोक, सुख सोचे धातु है, मुख बोलते द्वार को। तो जब हमारे जीवन में सुख होता है, शोक विषाद होता है, तब जाकर के जो घनीभूत अमृत है उसमें स्यंदन श्राव होता है। जैसे कि कठोर बर्फ को आप पी नहीं सकते, अपने प्यास को बुझाना हो तो कठोर बर्फ को आजकल के दिनों में दिसंबर जनवरी फरवरी में गंगोत्री में जो लोग रहते हैं उस बर्फ को अग्नि पर तपा करके तब जाकर प्यास बुझाते हैं। जब इधर परीक्षित महाराज को शोक हुआ कि सातवें दिन मैं मौत का ग्रास हो जाऊंगा, वैसे ही विषाद हुआ। विषाद के बाद सुखदेव से संवाद हुआ और संवाद के द्वारा अमृत का श्राव हुआ। तो हमारे जीवन में जब दुख हो, समस्या आए, तो प्रसन्न होना चाहिए कि अब जो है जो अमृत जो घनीभूत है उसमें श्राव होने वाला है। तो यहां पर भी ये जो ऐतिहासिक विषय बतलाया कि देवताओं ने जब सागर का मंथन किया, मंथन से हलाहल हुआ और अंत में अमृत उपलब्ध हुआ, यह मोक्ष ही अमृत है। सात्विक राजस वृत्तियां ही दैवासुर है। सबके अंतःकरण में कभी सात्विक वृत्ति होती है, कभी राजस, कभी तामस, और आपस में संग्राम चलता रहता है। इस संग्राम से कई बार आप जीतते भी हैं, कई बार हारते भी हैं। परंतु इस संग्राम में यदि आप इस संसार के बीज के द्वारा वैराग्य को उपलब्ध होंगे, क्योंकि वैराग्य हमारे मोक्ष का प्रथम पाथेय है, प्रथम पायदान है। जैसे कि छत पर पहुंचने के लिए प्रथम पायदान होती है, वैसे ही हमारे जीवन को सफल बनाने का सबसे प्रथम पायदान है विषाद। विषाद बीज है वैराग्य का। भगवान शंकराचार्य जब वैराग्य का लक्षण गीता भाष्य में करते हैं तो वहां कहते हैं कि विषयेषु दोष दर्शनम वैराग्यम। जब आप विषय में दोष दर्शन होने लगे तो अपने आप मन वहां से हट जाता है, वैराग्य हो जाता है। किसी को आप बहुत सुंदर माने, अपना विश्वस्त पात्र माने, पर किसी ने आपको कानाफूसी कर दिया कि आपको पता नहीं है आपके पीछे बहुत बुराई करता है, बस इतनी बात सुनते वहां से मन हट जाता है कि मैं तो इसको इतना अच्छा मानता हूं, प्रिय मानता हूं, हितकर मानता हूं, पर हमारे पीठ पीछे हमारा यह निंदक है। चाहे झूठी बात क्यों न हो, कहीं पर भी जब विषय में दोष का दर्शन होता है तत्काल वैराग्य होता है, परंतु वैराग्य को एक अच्छा आयाम मिलना चाहिए। जैसे हिमालय से तमाम नदियां झरने प्रवाहित हो रहे हैं, उनको हम बांध के द्वारा पहले रोकते हैं, जल का ठहराव करते हैं, इसके बाद नहर के द्वारा उस जल से सिंचाई करते हैं तो फसल होती है। ऐसे ही सबके जीवन में वैराग्य जरूर होता है। कोई बोले कि हमारे जीवन में वैराग्य नहीं तो बिल्कुल वो कोरा झूठ बोलता है। वैराग्य अवश्य होता है, परंतु वैराग्य को हम लोग जो है एक जो है नया आयाम नहीं दे पाते हैं। वैराग्य हुआ तो हम लोग क्या करते हैं कि थिएटर में चले गए मन को जो है बहलाने के लिए, या कहीं घूमने निकल पड़े, पिकनिक मनाने निकल पड़े। भगवान राम को ही वैराग्य हुआ, क्योंकि संसार काजल की कोठरी है, कैसे हूं सयानो जाए एक लकी लागी है पे लागी है। इस संसार काजल की कोठरी है। जब भगवान राम को वैराग्य हुआ तो गुरु वशिष्ठ के आश्रम में गए, और वहां पर जाने के बाद इतना अच्छा संवाद हुआ, उसी संवाद का देन है योग वशिष्ठ। योग वशिष्ठ और मांडुक्य कारिका बिल्कुल शुद्ध प्योर देसी घी के समान है, इसमें जरा सा मिलावट नहीं है। और उपनिषद में, रामायण भागवत में तो इधर उधर की प्रसंग भी है, परंतु मांडुक्य कारिका और योग वशिष्ठ, योग वशिष्ठ बड़ा ही विस्तृत ग्रंथ है, इसमें जो है बिल्कुल प्योर वेदांत आत्मा का चिंतन किया है। तो हमारे जीवन में जब भी विषाद हो तो समझना कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, कृपा का मूसलाधार वर्षा हो रही है, और उसके द्वारा वैराग्य उत्पन्न होना चाहिए। और वैराग्य के बाद सदगुरु की शरण में आए, और आपको सदगुरु न मिले तो बंबई प्रेम पूरी कल्प तरु है, यहां आएंगे जरूर कोई न कोई महापुरुष उपलब्ध होंगे, और वही वैराग्य आपके जीवन को उज्जवल करेगा और अंत में अमृत का पान कराएगा। अब समय हो गया, शेष बात कल विचार करेंगे। प्रेम से बोली सच्चिदानंद भगवान की।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू shaivam.org रेडियो, the 24/7 spiritual channel from shaivam.org.
2: Om Shivaya Namah. Dear listeners of shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Vaidik Shanti Mantra presented by Swami Sri Ariharananda Sagarji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: Tatva Jigyasu सज्जनों, माताओं, बहनों, हम लोग वैदिक शांति पाठ का विचार कर रहे हैं। पठन क्रम से चार वैदिक शांति पाठ का विचार किया, आज हम पांचवी कोटि में पढ़े जाने वाला जो मंत्र है उनका विचार करेंगे।

0: देखिए, ये हम बहुत बार इसको बोले होंगे, किंतु पूर्ण लाभ तो तभी मिलेगा जब हम अर्थपूर्वक अनुसंधान करेंगे। तो बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है ये, और जहां तक मैं मानता हूं कि यहां जो भी बैठे उन सबको ये याद भी होगा। इस मंत्र का बड़ा ही विलक्षण अर्थ है, संपूर्ण वेदांत सिद्धांत को समेटे हुए है। समझने से पहले संदर्भ का विचार करें। ये जो मंत्र है वो शुक्ल यजुर्वेदीय ईशावास्य उपनिषद के मंगल पाठ के रूप में ये प्रसिद्ध है, और मंत्र का व्याख्यान होता है ब्राह्मण। ब्राह्मण भाग की बृहदारण्यक उपनिषद के पंचम अध्याय के अंदर ये प्रथम पाया जाता है। और इससे पहले ये बता दें आपको, क्योंकि ये संदर्भ आपको तभी समझ में आएगा जब ये प्रसंग बता दे, कि जो वेद है वेद के दो विभाग है, मंत्र और ब्राह्मण। धर्म ब्रह्म प्रतिपादक प्रमाण वाक्यम वेद। धर्म और ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाला जो प्रमाण वाक्य है उनको वेद कहते हैं, क्योंकि धर्म और ब्रह्म किसी को भी प्रत्यक्ष अनुमान वगैरह प्रमाण से उनका ज्ञान नहीं होता है। ये दोनों मात्र शास्त्रीय समधिगम्य है, शास्त्र योनित्वात् में व्यास जी ने स्पष्ट किया है कि ब्रह्म का ज्ञान शास्त्र से ही संभव है, और धर्म का ज्ञान भी शास्त्र से ही संभव है। तो ऐसा जो धर्म और ब्रह्म इन दोनों का प्रतिपादन करने वाला जो प्रमाण वाक्य है उनको वेद कहते हैं, और वो जो वेद है उनका दो भाग है, मंत्र और ब्राह्मण। मंत्र को देखें, ऋक् यजु साम, ये तीन मंत्र है, इसको मंत्र कहते हैं। जो नियत पादबद्ध है गायत्री आदि, उनको ऋक मंत्र कहते हैं। जो गीति प्रधान है ऐसे मंत्र को साम मंत्र कहते हैं। और इन दोनों से विलक्षण जो मंत्र है उनको यजु मंत्र कहते हैं। और अथर्व मंत्र का यज्ञ में विनियोग नहीं होने से उसको यहां पर नहीं गिना। ऋक यजु और साम ये त्रयी कहते हैं। और जो ब्राह्मण है उनका भी तीन विभाग है, विधि रूप, अर्थवाद रूप और इन दोनों से विलक्षण। अब विधि के भी चार भाग है, उत्पत्ति विधि, अधिकार विधि, विनियोग विधि और प्रयोग विधि। और अर्थवाद भी है, दो प्रकार के हैं, गुणवाद और अनुवाद। और जो है उभय विलक्षण जो कहा वही है वेदांत वाक्यम। वेदांत वो दोनों से विलक्षण है, विधि और अर्थवाद से। यानी कि जो विधि भी नहीं है और अर्थवाद भी नहीं है ऐसे जो वाक्य है वो वेदांत वाक्य है, जिसमें ब्रह्म का प्रतिपादन है। तो इस प्रकार है मंत्र उपनिषद और ब्राह्मण उपनिषद। ये उपनिषद दो प्रकार की है। मंत्र भाग में पाई जाने वाली उपनिषद और वेद का जो द्वितीय भाग ब्राह्मण, उस ब्राह्मण भाग में पाई जाने वाली उपनिषद। और याद रहे आप लोगों को कि ब्राह्मण वो है जिसमें मंत्र का व्याख्यान है। मंत्र भाग का जिसमें व्याख्यान है उनको ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण यानी कि आप जाति विशेष न समझ लीजिए। इसलिए कई लोग अपने यहां ऐसे सनातन धर्म में ऐसे संगठन है जो मंत्र भाग को ही प्रमाण मानते हैं और ब्राह्मण भाग को प्रमाण रूप से वो नहीं स्वीकारते हैं। आर्य समाजी वगैरह है वो मंत्र भाग को ही प्रमाण रूप से मानते हैं। मंत्र भाग में पाई जाने वाली उपनिषद है ईशावास्य उपनिषद, ऐसे क्रम से शुक्ल यजुर्वेद के मंत्र भाग में। वैसे तो अन्य भी मंत्र भाग में पाई जाने वाली उपनिषद है, मुंडक उपनिषद वगैरह, किंतु यहां जिसका जो प्रसंग है, जिसकी बात करनी है, ये जो वैदिक शांति पाठ, ये शुक्ल यजुर्वेद के 40वें अध्याय के रूप में ये ईशावास्य उपनिषद है। शुक्ल यजुर्वेद संहिता यदि आप देखें तो ये ईशावास्य उपनिषद है, वो 40वां अध्याय है। इससे पहले 39 जो अध्याय है वो कर्मकांड के प्रतिपादक है, उनका कर्म में विनियोग है। और ये जो 40वां अध्याय है जिसको हम ईशावास्य उपनिषद कहते हैं, ईशावास्य उपनिषद के रूप में जो प्रसिद्ध है, उसमें ब्रह्म तत्व का प्रतिपादन है। इसलिए भगवान भाष्यकार ने सर्वप्रथम ईशावास्य उपनिषद का भाष्य करते समय पहले ही कहा कि ईशावास्यम इत्यादयो मंत्रः कर्मसु अविनियुक्तः। ईशावास्यम इत्यादि मंत्रों का कर्म में विनियोग नहीं है। क्यों? तेषाम अकर्मशेषस्य आत्मनः याथात्म्य प्रकाशकत्वात्। वो जो कर्म का शेष नहीं है, ऐसे आत्मा का याथात्म्य उनका पारमार्थिक स्वरूप है, उनको प्रकाशित करने वाले ये मंत्र है। और आत्मा कर्म का शेष नहीं है, ऐसे आत्मा का प्रकाशन ये मंत्र करते हैं। इसलिए उपनिषद ब्रह्म तत्व को प्रकाश करने वाली है। और भगवान भाष्यकार ने कहा कि ईशावास्यम इत्यादि जो मंत्र है वो ब्रह्म तत्व का प्रकाश करते हैं। सपर्यगा चुक्रमकाय मवृणम अस्नावीरम शुद्ध मपाप विद्धम इत्यादि मंत्र से आत्मा के स्वरूप को बताया। इसलिए ईशावास्य उपनिषद ये मंत्र उपनिषद है, और ये उपनिषद के मंगल पाठ के रूप में ये मंत्र जिसका आज हम विचार करेंगे वो प्राप्त है। और ये जो ईशावास्य उपनिषद है, जैसे कि कहा यह मंत्रोपनिषद है, और ब्राह्मण जो होता है वो मंत्र का व्याख्यान होता है, तो ये जो मंत्रोपनिषद का व्याख्यान है बृहदारण्यक उपनिषद। ईशावास्य उपनिषद का ही व्याख्यान है बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद है वो ब्राह्मण भाग की है, और ईशावास्य है वो मंत्र भाग की है। इसलिए यही मंत्र व्याख्यानात्मक होने से बृहदारण्यक उपनिषद के पांचवें अध्याय में ये मंत्र पाया जाता है। और हमारे आचार्य बताते हैं कि बृहदारण्यक उपनिषद में जो वाक्य है ब्रह्म वा इदम् अग्रे आसीत् तद् आत्मनम् एव अवेद अहम् ब्रह्मास्मि इति तस्मात् तत्सर्वम् अभवत्। ये कहा, उस वाक्य में कहा कि ब्रह्म वा इदम् अग्रे आसीत्, इदंकारास्पद जो ये नाम रूपात्मक संसार है वो उत्पत्ति से पहले ब्रह्म मात्र था। छांदोग्य उपनिषद में भी छठे अध्याय में इसको कहा सदैव सौम्य दमग्रे आसीद एकमेवा द्वितीयम्। और वो जो ब्रह्म है वो ब्रह्म से ये सारे संसार की उत्पत्ति हुई है। इस बात को श्रुति वाक्य बताते हैं, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ति येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ते विषम विशन्ति तद् ब्रह्म तद् विजिज्ञासस्व। उस ब्रह्म से ये संसार की उत्पत्ति हुई। इसलिए ये जो इदंकारास्पद नाम रूपात्मक के जो संसार है वो उत्पत्ति से पहले वो ब्रह्म मात्र था। और फिर कहा कि तद आत्मानम एव अवेद, उस आत्मा को जाने। किस रूप से जाने? अहम ब्रह्मास्मि इति, इस रूप से उनको अनुभव वाक्य है। और तस्मात् तत्सर्वम अभवत, जिससे ये सारा संसार उत्पन्न हुआ है वो ब्रह्म मैं हूं, इस प्रकार का अनुभव करना ही मनुष्य जन्म का लक्ष्य है। ये जो वाक्य है, इस श्रुति वाक्य में जिसका उपक्रम किया हुआ है, इस उपक्रम में जो श्रुति का अर्थ है वो अर्थ, उनका जो आधार वो मंत्र उपनिषद है। यही मंत्र में उपसंहार है जिसका हम विचार करेंगे। क्यों ऐसा? तो कहा कि ब्रह्मात्मिकत्व निर्णयार्थम, ब्रह्म और आत्मा का जो एकत्व है उस एकत्व का निर्णय करने के लिए ये मंत्र है। इसलिए इस मंत्र में संपूर्ण उपनिषद का जो प्रतिपाद्य ब्रह्म और आत्मा की एकता, वह इस ये मंत्र का विषय है। इस मंत्र में ब्रह्म और आत्मा की एकता बताई गई है, इसलिए इसको मंगल पाठ के रूप में हम पढ़ते हैं। ठीक है, इनका अर्थ समझ में न भी आए किंतु बोलने मात्र से, इनका पाठ करने मात्र से क्या होगा? मंगल होगा, विघ्न की निवृत्ति होगी। हम लोग वेदांत का अध्ययन करने के लिए प्रवृत्त हुए तो जो विघ्न आते हैं वो विघ्न की निवृत्ति ये करते हैं। विघ्न किसको कहते हैं? पाप को विघ्न कहते हैं। पाप ही क्या है? विघ्न। जो हमको वेदांत का विचार करने में बाधा डालते हैं उनको विघ्न कहते हैं। तो फिर आप कहेंगे कि रोज रोज क्यों करना है इसको? तो सज्जनों, रोज नए नए विघ्न आते हैं। विघ्न ये तो नहीं कि एक ही दिन आए, प्रतिदिन विघ्न आते। और वो विघ्न कोई अन्य के द्वारा किए हुए नहीं, खुद के ही है। खुद के द्वारा जो किए गए पाप कर्म है वो ही विघ्न के रूप में बाधा करते हैं। तो प्रश्न ये भी उठेगा कि क्या ये मंगल पाठ मात्र से वो पाप दूर हो जाएंगे? हाँ, हो जाएंगे बिल्कुल। प्रारब्ध तीन प्रकार का होता है, मंद, मध्य और तीव्र। तीन प्रकार का प्रारब्ध होता है। तो जो मंद प्रारब्ध है, पाप कर्म, वो ये मंगल पाठ से दूर हो जाता है। और जो मध्य कोटि का जो प्रारब्ध है वो शिथिल पड़ जाता है ये मंगल पाठ से। ये मंगल पाठ में ये सामर्थ्य है कि मंद प्रारब्ध को तो वो, मंद विघ्न को तो वो समाप्त कर देते हैं और मध्यम को कमजोर कर देते हैं। देखो, है ना लाभ। इसलिए कभी ये न समझे कि ये समय का वेस्ट है। कई लोग ऐसे कहते हैं कि ये तो रोज रोज बोलते हैं, क्या रखा इसमें? घर में भी यदि सुबह में समय मिले तो ये दशो दश का पाठ अवश्य रोज करना चाहिए। तो देखिए, इसलिए ये जो मंगल पाठ है उनसे विघ्न की निवृत्ति होती है पठन मात्र से, और अर्थपूर्वक अनुसंधान करने से अहम ब्रह्मास्मि ये अनुभव हो जाता है। तो देखिए इसमें प्रवेश करते हैं, उच्चारण करवा दिया तो पहले कहा ओम पूर्णमदः, एक कहा पूर्णमदः, इसको पहला देखें। इसमें दो पद है, एक पूर्णम और दूसरा है अदः, उसको अलग करेंगे तो अदस हो जाएगा, अदस। पूर्णम और अदस ये दो पद है। जो परोक्ष है उनके लिए अदह शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो हमको आंख से नहीं दिखता है, जो परोक्ष है उनके लिए अदस शब्द का प्रयोग है। तो अदह पूर्णम ऐसा होगा, पाठ तो पहले पूर्णम शब्द का पाठ पहले है, अदह का बाद में, किंतु उनका अर्थ समझने के लिए आप ये कहे कि अदह पूर्णम ऐसा कहे, अदह पूर्णम। इसमें कहा गया कि अदह यानी कि जो परोक्ष है, जो परोक्ष ब्रह्म है वो पूर्णम, वो पूर्ण है। तो आपको यह बता दे कि ब्रह्म के दो स्वरूप का वर्णन उपनिषद में है, एक उपाधिक ब्रह्म और निरुपाधिक। निरुपाधिक ब्रह्म और सोपाधिक ब्रह्म ऐसा भी कहे, सोपाधिक। सोपाधिक ब्रह्म वो है जिन्होंने उपाधि को धारण किया है, उपाधि से संयुक्त जो ब्रह्म है उसको कहते हैं सोपाधिक। और निर्गत उपाधि, उपाधि जिसमें नहीं है उस ब्रह्म को कहेंगे निरुपाधिक। और प्रकारांतर से आपको समझ में आए इसलिए और भी कहते हैं कि सगुण और निर्गुण, सगुण साकार और निर्गुण निराकार। सगुण साकार परमात्मा के हजारों रूप है और हजारों नाम है, और निर्गुण और निराकार जो है वो परमात्मा एक ही है। निर्गुण और निराकार जो परमात्मा है उन्हीं की सगुण और साकार के रूप में हजार हजार नाम है और हजार हजार रूप है। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, एक ही सत परमात्मा है, उनको भिन्न भिन्न रूप से उपाधि के कारण बहुत रूप से कहते हैं। बिंब स्थानीय सूर्य एक ही है किंतु एक हजार पानी के भरे हुए घड़े पड़े हैं, उन सबके अंदर सूर्य का प्रतिबिंब सबके अंदर अलग अलग दिखेगा। तो हजार सूर्य आपको दिखेंगे, जितनी उपाधियां होगी उतने सूर्य दिखेंगे। ऐसे ही जैसे बिंब स्थानीय सूर्य एक है, किंतु उपाधि के कारण वो अनंत दिखते हैं। वैसे निरुपाधिक जो ब्रह्म है वो एक है, किंतु ये सब जो उपाधियां है उस उपाधियों के कारण वो अनंत दिखते हैं। हम अभी जो अपने ब्रह्म स्वरूप का अनुभव नहीं कर रहे हैं उपाधि के कारण हम अपने को क्या मानते हैं, जीव मानते हैं। किंतु ये जो उपाधि का परित्याग हो जाए तो जहां पर हम हैं वहीं पर हमको अपने पारमार्थिक ब्रह्म स्वरूप का अनुभव होगा, और वो अहम ब्रह्मास्मि रूप से होगा।
1: ओम नमः शिवाय। You are listening to Shaivam.org Radios, 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.
2: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: आप आध्यात्मिक हैं, आप सत्संग कर रहे हैं, आप श्रवण मनन कर रहे हैं, तो आपके साधन की अवस्था है। आपको परोक्ष ज्ञान हो गया, अब आपको तत्व का परोक्ष ज्ञान हुआ, आपने ब्रह्म के बारे में सुना, आपने अपने बारे में भी सुना। क्या सुना? तत्वमसी। आपने अपने बारे में सुना कि तुम बाहे हो, ये अपनी खबर अपने को मिली, ये अपने को सूचना मिली कि भैया हम कौन है। हमने अपने बारे में भी सुना कि हम वही हैं, ये परोक्ष ज्ञान है। और संसार के बारे में भी सुना, ये संसार मिथ्या है, मिथ्या। आप श्रवण करते ना, ये तीन सूत्र हैं वेदांत के सर्वोच्च सूत्र, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। ये परमात्मा की खबर है, ब्रह्म सत्यम परमात्मा के बारे में, और संसार के बारे में कहा कि ये मिथ्या, और आपके बारे में कहा कि जीवो ब्रह्मैव नापरः, आप वही हैं, वही ब्रह्म है। ये तीन चीजें आपने सुनी, और सुनने के बाद आपको ज्ञान हो गया ना, ये ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। फिर कभी बताऊंगा परोक्ष ज्ञान क्या है। ये परोक्ष ज्ञान माने आपने सुना और आपको ज्ञान हुआ, ये परोक्ष ज्ञान है। श्रवण मात्र से, श्रवण जन्य जो ज्ञान है वो परोक्ष ज्ञान। आप परोक्ष ज्ञान होने के बाद फिर धीरे धीरे धीरे आपने उसको बढ़ाया, उसको आपने चिंतन किया, मनन किया, बहुत आगे बढ़ाया। धीरे धीरे धीरे फिर आपको वो ज्ञान आपका अनुभव बन गया, अपरोक्ष ज्ञान हो गया। आपको अपरोक्ष का मतलब समझ गए ना, हमारे जीवन में ब्रह्म की सत्यत्व का बोध हो गया। ब्रह्म सत्यत्व माने ये त्रैकाला बाध्यत्वम सत्यत्वम, ये तीनों कालों में जो बाधित नहीं होता, जिसमें कोई रूपांतरण नहीं, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं, जिसमें कोई नाश नहीं, उसको बोलते हैं सत्य। अनुभव में आ गया, सत्य का अनुभव हुआ, प्रत्यक्ष में आ गया। अब आपको कोई बोले कि सत्य क्या है तो आपको ले आओ, भगवान को छोड़कर दुनिया में अब कोई सत्य चीज नहीं है। और संसार का अनुभव क्या हुआ, ये मिथ्या है। ये आपके जीवन में दो प्रकार का वैराग्य, ज्ञान पूर्व में और ज्ञान के बाद में भी। आपको पहले भी वैराग्य होता है, श्रवण मनन करने के लिए भी तो वैराग्य चाहिए। आपको गुरु के पास जाना है तो आप वैराग्य के बिना जाएंगे क्या? आपके लिए श्रवण के लिए भी वैराग्य चाहिए, लेकिन आपको बाद में ये ज्ञान हुआ कि सारा संसार मिथ्या है, और उसके बाद भी आप में वैराग्य हो जाता है। इसलिए ज्ञानोत्तर काल का वैराग्य स्थायी होता है, वैराग्य हो गया। या अपरोक्ष, मैं आपको एक घटना सुना देता हूं। अपरोक्ष का अर्थ क्या है? आप जा रहे हैं, रास्ते से गुजर रहे हैं, और आपके सामने एक चीज पड़ी हुई आपको मिली और वो कंकन था, सोने का कड़ा था। आपने कड़े को देखा और सोने की चीज, और इस समय तो सोना बड़ा महंगा है ना? अब आप क्या करोगे उस सोने के कड़े को देख ईमानदारी से? अब आप प्रेम पूरी में आए तो यहां तो ईमानदारी चलेगी, पूरी भी करो तो थोड़ा ईमानदारी से। आपके सामने सोने का कड़ा गिरा पड़ा है, आपको मालूम है कि निश्चित सोना, तो आप क्या करोगे? ईमानदारी से क्या करोगे आप? मैं आपको बेईमान नहीं समझूंगा, क्योंकि मैं ही देख रहा हूं आपकी गर्दन हिल रही कि नहीं, आपके बगल वाला थोड़ी देख रहा है। आपके जीवन का एक सूत्र है, आपके जीवन में सबसे पहला जो भाव होता है वो सत्यत्व बुद्धि, और सत्यत्व बुद्धि के बाद दूसरे नंबर पर महत्व बुद्धि, चौथे नंबर पर संकलन की मनोवृत्ति, पांचवें नंबर पर प्रवृत्ति, और छठे नंबर पर स्वीकृति। आप फिर सातवें नंबर पर क्या करोगे? आप अपने कड़े को, उस कड़े को उठा करके आप अपने पर्स में रख लोगे, उसमें सत्यत्व बुद्धि है, मालूम पड़ा ये सत्य है, और उसके बाद आपके मन में उसके प्रति महत्व बुद्धि जुगी, ओ सोना है सोना, महत्व बुद्धि बनी, और उसके बाद संकलन की मनोवृत्ति में उठा लूं क्या, उठाऊं क्या? फिर आप उठाएंगे नहीं, उसके बाद आसपास लोगों को देखेंगे, आप कोई देख तो नहीं रहा है, और उसके बाद प्रवृत्ति, और प्रवृत्ति के बाद फिर आप उसको उठा के अपने पर्स में रख लेंगे, और उसके बाद क्या होगा? आप घर में आएंगे और रात भर सोएंगे कि नहीं? आप रात भर सोचते जाएंगे, ओ कितना होगा ये, सबसे पहले आप यही सोचेंगे कि ये कितना होगा, 100 ग्राम है, 200 ग्राम है, कितना तोले का, ये सोचेंगे आप, आपका मन तोलता रहेगा, हो सकता है हाथ में भी लेके आप उठ उठ के देखेंगे, वो कितना है कितना है कितना है। महीनों गुजर गया, महीनों, मैं नाम नहीं बताऊंगा, अपने यहीं की घटना है, इसी अपने इसी समुद्र के किनारे की घटना है। एक कोई नौकरानी थी और वो गई घूमने के लिए पार्क में, और उसको नारायण एक हार मिला, सच्ची घटना है, हार मिला उसको, वो सोने का हार, बड़ा कीमती हार, और वो नेपकिन में बंधा हुआ था। अब वो बेचारी सोची कि मैं रात भर सोई नहीं कि ये कितने का होगा क्या होगा, वो गरीब थी, वो बंगाली, अब वो सोचती गई कि क्या होगा कितने का होगा, मैं फिर इसको बेचूंगी, मैं फिर ये खरीदूंगी, मैं नाक का खरीदूंगी, कान का खरीदूंगी, और क्या क्या सोच रही थी वो। दूसरे दिन वहां गई जहां सत्संग चल रहा था, वहां एक आदमी थे ट्रस्टी, वहां के मेन, नाम नहीं बताऊंगा पहले कह रहा हूं मैं, और उन्होंने क्या बोला कि ये आप थोड़ा देखिए तो, और इसको आप थोड़ा बता दीजिए है क्या चीज है, कितने का है, भरोसा था उसके ऊपर। उसके बाद वो श्रीमान जी घर ले गए, और एक दिन दो दिन तीन दिन चार दिन बीता, वो बात ही न करे। फिर एक दिन उन्होंने पूछा कि भैया वो क्या हुआ? अरे बोले वो तो ऐसी चीज है, बोले वो ऐसी चीज है। तो उन्होंने कहा ऐसी चीज है तो हमको वापस तो कीजिए, कहां है? अरे बोले वो रखी थी टेबल पर, पता नहीं कौन उठा के ले गया। अब वो खूब रोई, बोली अरे बोले तो सही चीज थी, और वो सही नहीं होती तो कहां कोई उठा के ले जाता, घर से कौन ले जाता, छोड़ो बात। बहुत दुखी हुई, बाद में हमको भी सुनाया, फिर उन्होंने 5,000 रूपये दिया उन्होंने, बड़ा उदार मन से 500 रूपये नौकर उठा के ले। देखो कैसे कैसे लोग है वो, अन्ना हजारे, यही तो कह रहा है और क्या कह रहा है। सब जगह पर है भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचारी तो ये। आपको कड़ा मिला वो सोने का कड़ा, और उसके बाद आप रात भर नहीं सोएंगे भैया, आप रात भर नहीं।

समझना है। और तीसरा सूत्र आपके जीवन का है, मैं वही हूं तत्वमसि। और यहां भी अपरोक्ष यही आपको मालूम पड़ा। परम पूज्य महाराज श्री को उड़िया बाबा जी कहते हैं, वो दृष्टांत बड़ा सुंदर है। बालू हाथ में लेके, हे शांतनु, बालू का एक एक कण जब तक तुमको ब्रह्म न दिखाई दे तब तक तुम अपने ज्ञान को पूरा मत समझना। माने कण कण आपको ऐसा मालूम पड़े ये ब्रह्म है, तब क्या हो गया? अब आपको अपरोक्ष ज्ञान हो गया। अपरोक्ष ज्ञान, परोक्ष ज्ञान के बाद नंबर आता है अपरोक्ष ज्ञान। और अपरोक्ष ज्ञान के बाद शोक नाश, अभी मोक्ष की अवस्था है। ये दो जो अवस्था है ना, ये मोक्ष की अवस्था है, शोक नाश और आनंदावाप्ति। आप बोलते हैं कि नहीं, दुख की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। ये आभास की सात अवस्था बताई है, ये आभास की सात अवस्थाएं हैं। अब ये आभास की जो सात अवस्थाएं हैं ना, इसमें जो अज्ञान है ये आवरण है। अज्ञान का क्या है? आवरण है। और आप अंदर ब्रह्म तत्व छिपा है, जैसे बीज है ना, बीज, बीज के ऊपर आवरण है और उस आवरण को हटाना पड़ता है, तब जाके क्या बनता है? वो अंकुर बनता है, व्यक्त होता है। उसका जो वृक्ष होना व्यक्त होता है जब उसका वो ढक्कन, जब आवरण भंग होता है। ऐसे हमारे ऊपर आवरण पड़ा है। किसका आवरण है? अज्ञान का। और उसी के कारण नारायण यहाँ विक्षेप है, सारा संसार है। इसलिए शास्त्र कहता, भैया आप ब्रह्म है, या आप बोल सकते ब्रह्म बनने की संभावना है, लेकिन क्या करना पड़ेगा उसके लिए? बस यही तो है, आपको आवरण को हटाना पड़ेगा। बिना आवरण हटाए आप उस तत्व की उपलब्धि को पा नहीं सकते हैं। आप जो हैं वो आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि अज्ञान के आवरण में हम पड़े हुए छिपे। इसलिए दोनों चीजें, यहां आवरण हटाना है आपको, आवरण अज्ञान आवरण और विक्षेप को हटाना है, और परमात्मा के परोक्ष और अपरोक्ष ज्ञान को पाना है। यहां दोनों चीजें हैं। ये दो चीजें जब घटित हो जाती हैं तो आपका तीसरे क्रमांक में नंबर है मोक्ष का। ब्रह्म तत्व की अनुभूति मोक्ष की अनुभूति है, अपरोक्ष ज्ञान के बाद की अनुभूति है। या दो चीजें, आप इसको तीन चीजों में विभाजित कीजिए। पहले बंधन है, अज्ञान आवरण और विक्षेप, ये तीनों बंधन है। बंधन है, बंधन, बंधन की अवस्था। और साधन की अवस्था है साधना, ये परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान। यहां पुरुषार्थ है, यहां स्वीकृति है। आपको परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान को पाने के लिए वो सारी चीजें जीवन में अपनाना पड़ेगा। सारी चीजें क्या? विवेक, वैराग्य, समाधि, संपत्ति, ये सारी चीजें। और आपके ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु में सारी चीजें हैं। आप आसक्ति का परित्याग कर रहे हैं, वैराग्य को धारण कर रहे हैं, समाधि संपत्ति को जीवन में धारण कर रहे हैं, ये सारी चीजें परमात्मा से मांग रहे हैं। और उस तत्व को पहुंचाने के लिए, यहां आपको अज्ञान को काटने के लिए आपके पास ताकत चाहिए, आपके पास बल चाहिए, अज्ञान को काटने का बल और ज्ञान को पाने का बल, संसार को छोड़ने का बल। ये वैराग्य, ये बल है, ये छोड़ने का बल है, और ज्ञान को ग्रहण करने का बल। आपको कहा, आपको मोक्ष को भी पाना है तो वहां पर भी स्वीकृति के लिए और अस्वीकृति के लिए, ग्रहण के लिए, त्याग के लिए आपके जीवन में बल चाहिए। आप यहां तीनों, आप शारीरिक बल, आपका मानसिक बल, आपका बुद्धि बल, ये तीनों बल आप मांगिए। आप यहां सह वीर्यं करवा वह, श्रुति कहती कि आप शारीरिक बल हमको प्रदान करो। आप शारीरिक बल जब प्राप्त करते हैं तो आप अच्छी प्रकार से बैठ करके श्रवण मनन निधिध्यासन कर सकोगे। आपका मन यदि मजबूत होगा तो मनन कर सकेगा, और बुद्धि आपकी बलवान होगी तो निधिध्यासन करेगा। और जब आपका तन मन और बुद्धि जब बलवान होगी

अपने स्वीकृति का भी बल होगा और आप में आपके अंदर त्याग का भी बल होगा। आप कुछ चीजें छोड़ेंगे भी और कुछ पकड़ेंगे तब जा करके आप मोक्ष को पा लेंगे। इसलिए यहां दोनों बल, हाँ यहां पर दोनों छोड़ने का भी बल चाहिए और यहां पकड़ने का भी बल चाहिए। आपको कोई बोले कि भैया वो चीज गलत है आप इसको छोड़ दो, आप क्या बोलते हैं? या छोड़ नहीं पा रहे हैं। आप बोलते कि नहीं? आप बोलते ना वहां कमजोरी का अनुभव कर रहे हैं, छोड़ नहीं पा रहे हैं। माने छोड़ने के लिए भी क्या चाहिए आप में? बल चाहिए। अज्ञान को छोड़ने के लिए भी क्या चाहिए? बल चाहिए। इसलिए श्रुति कहती है सह वीर्यं करवा वह, बल के बिना आप आत्म तत्व को भी उपलब्ध नहीं हो सकते। और अब श्रुति कहती है मां विद्विषाव है, अंतिम सूत्र है ना, चारित्व तो है ना पादेश। श्रुति कहती कि हम लोग किसी से भी राग द्वेष न करें। ये सामान्य प्रार्थना नहीं है। हम दिन भर न किसी के प्रति राग रखते हैं और किसी के प्रति द्वेष रखते हैं, और राग और द्वेष ही हमारे जीवन में सबसे बड़ा बंधन है। हम किसी के प्रति राग की भावना, राग में वस्तु सुंदर मालूम पड़ती है और द्वेष में वस्तु कुरूप मालूम पड़ती है। राग में हम देना चाहते हैं और द्वेष में लेना चाहते हैं। कितना आश्चर्य है। आपका राग है, आपका किसी के प्रति प्रेम है, तो आप क्या करते हैं? मैं इनको क्या दूं? प्रेम में देने की भावना होती है, मैं क्या दूं क्या दूं। और जहां द्वेष होता है ना, वहां दी हुई चीज को भी लेने की भावना होती है। कई बार ऐसा होता है दे तो दिया लेकिन बाद में मालूम पड़ा अरे ये तो बड़ा गड़बड़ है, फिर कोई ना कोई बहाना मार देंगे आप और ले बोले भैया वो वापस करो वापस करो वापस करो। ये द्वेष की भावना लेने की भावना, देने की नहीं। और राग की भावना में देने की भावना आदमी जुड़ जाता है। वस्तुतः राग में भी हम जुड़ते हैं और द्वेष में भी जुड़ते हैं। राग भी चाह है और द्वेष भी चाह है। राग जुड़ने की चाह है और द्वेष अलग होने की चाह है। इसलिए भगवान ने कहा राग द्वेष वियुक्त स्तो विषयानिंद्रियेश चरण आत्मवश्यैर विधेयात्मा प्रसाद मदि गच्छति। आध्यात्मिक जीवन में हो या सांसारिक जीवन में, ये राग द्वेष आदमी को बड़े दुख देते हैं। आप पड़ोस के व्यक्ति के प्रति भी राग द्वेष करोगे तो आप दुखी रहोगे आप। इसलिए भगवान ने कहा राग द्वेष को आप अलग करो और विषयों से अपने मन को हटाओ, तब जाके भगवान ने कहा आत्मवश्य ही आप स्वयं अपने ऊपर नियंत्रण कर सकते हो। राग द्वेष वाला व्यक्ति अपने मन पर कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। और आप यदि आत्मवशी नहीं है, आपका अपने ऊपर ही नियंत्रण नहीं है, तो आप कभी शांति को नहीं पा सकते। प्रसादम अधिगच्छति, भगवान कहते वो व्यक्ति प्रसाद को प्राप्त करता है। प्रसाद को आप भगवान के मंदिर में जाते हैं और आप क्या प्राप्त करते हैं? प्रसाद प्रसाद। तो यहां पर भी भगवान कहते प्रसाद उसी को मिलता है प्रसाद। जो आपने इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करता है, प्रसाद भी मंदिर में उसी को मिलता है। और प्रसाद का मतलब समझते हैं क्या होता है? प्रसाद तो बाह्य रूप से आप देखेंगे कोई मीठा है, कोई लड्डू है, कोई पेड़ा है, कोई मिश्री है, बाहर के रूप से तो प्रसाद है। लेकिन वास्तविक प्रसाद का अर्थ होता है प्रसादो नाम प्रसन्नता। प्रसाद शब्द का अर्थ होता है प्रसन्नता। प्रसाद शब्द का अर्थ होता है स्वास्थ्य। भगवान भाष्यकार ने वहां प्रसाद शब्द का अर्थ स्वास्थ्य ऐसा किया है। हम अपने जीवन में यदि राग द्वेष में यदि है ना, तो हम स्वस्थ हैं कि अस्वस्थ हैं? अच्छा, इसकी एक व्याख्या बड़ी सुंदर करते हैं महात्मा लोग। ये स्वास्थ्य बोलते ना, स्वस्थ, स्वस्थ का अर्थ क्या है? स्वस्मिन् तिष्ठति इति स्वस्थ। ये स्वस्थता की परिभाषा है। स्वस्मिन् तिष्ठति इति स्वस्थ तस्य भावो स्वास्थ्यम्। अपने में स्थित होने का ही नाम स्वास्थ्य है और अपने में स्थित नहीं होने का नाम ही अस्वस्थ है।
आप राग में, आप किसी के प्रति राग कर रहे हैं, तो आप अपने में हैं कि आप दूसरे में हैं? आप किसी से द्वेष कर रहे हैं तो आप अपने में हैं कि दूसरे में हैं? अब आप अपने बारे में सोचोगे कि आप दूसरे के बारे में, तो आप स्वस्थ हैं कि अस्वस्थ हैं? आप किसी के प्रति राग करते हैं तो आप अपने बारे में सोचेंगे कि दूसरे के बारे में, तो आप स्वस्थ हैं कि अस्वस्थ हैं? अरे आप बहुत पहलवान हैं देखने में, आओ बहुत मजबूत हैं, लेकिन आप राग और द्वेष में हैं, तो आप स्वस्थ हैं कि अस्वस्थ हैं? बड़ी मजेदार बात है। और जब आप अस्वस्थ हैं तो आप फिर शांत होंगे कि अशांत होंगे? आप किसी के प्रति राग, किसी के प्रति द्वेष रखते हैं तो अपने आप राग द्वेष आपके मन की शांति को भंग कर देते हैं। आप अस्वस्थ हैं ना, फिर आप शांत और सुखी कैसे हो सकते हैं? स्वास्थ्य की एक परिभाषा है, आपको जो चीज याद आती है ना तो समझना कि वो चीज अस्वस्थ है। एक स्वास्थ्य की परिभाषा, एक सूत्र है, आपकी जो चीज याद नहीं आती है तो समझना कि वो चीज आपकी क्या है, स्वस्थ है। और जो चीज बार बार याद आती है वो चीज क्या है, अस्वस्थ है। आपके पास आपके 32 दांत है कि नहीं? घर में तो रख के नहीं आए ना, कई बार छूट जाते हैं गलती से। आपके पास अपने 32 दांत हैं, लेकिन एक भी दांत आपको याद आ रहा है क्या? नहीं। लेकिन किसी एक दांत में थोड़ा दर्द हो जाए, 32 में से वही एक दांत आपको बार बार याद आएगा, ओ वही दांत, आपकी जीभ बार बार वहीं पहुंचेगी, समझ लीजिए कि अब वो दांत क्या हो गया है, अस्वस्थ हो गया। आपके पास 10 अंगुलियां हैं, अब ये 10 अंगुलियों में से कोई अंगुली आपको याद आ रही क्या? पक्का समझ लीजिए कि वो 10 अंगुलियां आपकी क्या है, स्वस्थ है। और यदि एक अंगुली ही बार बार याद आ रही तो क्या समझना, वो अस्वस्थ हो गई है। आपके पास इतना बड़ा शरीर है, 5-6 फुट, आपको याद आ रहा है? नहीं, मालूम ही नहीं पड़ रहा है, समझ लीजिए कि आपका शरीर क्या है। और यदि मालूम पड़ रहा हो तो देखना, अस्वस्थता में मालूम पड़ता है बार बार, ओहो मालूम पड़ता है, हाथ मालूम पड़ता है, पैर मालूम पड़ता है ना? मालूम होना ही क्या है, हमारी अस्वस्थता। हमारी इंद्रियां मालूम पड़ रही हैं क्या? हमारे पास पांचों इंद्रियां, पांचों ज्ञानेंद्रियां, पांचों कर्मेंद्रियां आपको मालूम नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन मालूम नहीं पड़ रहे तो समझ लीजिए कि आप क्या है। और यदि कोई भी इंद्रिय मालूम पड़ रही है आपको तो समझ लीजिए क्या है, अस्वस्थ है। आप राग में हैं तो आपको मालूम पड़ने लगता है कि नहीं, ये राग अस्वस्थता है। आपका जिसके प्रति राग होता है वो आदमी ज्यादा मालूम पड़ता है, जिसके प्रति द्वेष होता है वो आदमी आपको मालूम पड़ता है, ज्यादा मालूम पड़ता है। आप जब करने के लिए बैठे हैं और आप जिसके प्रति द्वेष करते हैं बार बार, अरे वही मालूम पड़ता है, बार बार वही आपके चेतना में आता है, वही आपके मन में आता है, वो बार बार आपके मन में अपने होने की सूचना देता है, और वही उसकी क्या है, अस्वस्थता। इसलिए राग और द्वेष हमारे मन की सबसे बड़ी अस्वस्थता है, क्योंकि राग और द्वेष में हमको दुनिया मालूम पड़ती है। जिसके प्रति राग द्वेष हम करते हैं ना, वो ज्यादा से ज्यादा मालूम पड़ता है, और ये अध्यात्म के मार्ग में सबसे बड़ा प्रतिबंध है। इसलिए श्रुति कहती है मां विद्विषावहे, भगवान से प्रार्थना कर रही हैं हम दोनों, गुरु शिष्य श्रोता वक्ता, हम किसी से भी राग द्वेष न करें। समझ में आया कि नहीं? ये बहुत ऊंची प्रार्थना, बहुत ऊंची प्रार्थना है। आप प्रतिदिन इस प्रार्थना को दोहराइए, अर्थ के साथ दोहराइए, ओम सहना भवतु, हमारी भगवान रक्षा करो हम सबकी, हम सबका आप पालन पोषण करो, हमको बलवान बनाओ, सह वीर्यं करवाओ, हम सबको बलवान बनाओ। और मां विद्विषावहे, हम किसी से भी राग द्वेष
न करे, ये बहुत ऊंची प्रार्थना है, बहुत ऊंची प्रार्थना। आप इस प्रार्थना के अर्थ को ध्यान में रख करके प्रतिदिन इस प्रार्थना को दोहराओ तो जरूर वो सारी चीजें हमारे जीवन में आना शुरू हो जाएगी, और तब जाके ओम शांति ही शांति ही शांति ही, तीन बार शांति। अब आपके जीवन में ये तीन चार सूत्र यदि आपके जीवन में आए ऊपर वाले, तब आप कल्पना करो किसकी, शांति की। अब शांति, और एक बार नहीं बोला, आप चेतावनी देना चाहते हो तो क्या बोलते हो, तीन बार, एक दो, निश्चित होगी बात, मजबूत हो गई, अब गहरी हो गई। आप किसी भी बात को गहराई तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप उसको तीन संख्या का तीन संख्या को आप गिना लेते। यहां श्रुति ने लिखा अब शाश्वत शांति है। अब आपके जीवन में ऊपर के चार सूत्र आ गए, आप कोई नहीं रोक सकता है, अब शांति शांति शांति। उसका दूसरा भी अर्थ है, आध्यात्मिक शांति, अधिदैविक शांति, अधिभौतिक शांति, उसके बाद शांति शांति, और कोई अशांति नहीं है। बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है, और ये सूत्र दैनिक जीवन में हमारी प्रार्थना का है, इसलिए इसके अर्थ को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। अपने वाणी को विराम देता हूं, कल आप लोग कठोपनिषद का जो मूल मंत्र है अब वहां से हम शुरुआत करेंगे।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
2: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org, द नेक्स्ट प्रोग्राम इज Shivastotra. In this, you are about to listen Rudrashtakam, presented by Ramesh Bhai Oza. Thank you. Om Namah Shivaya.

ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org, द नेक्स्ट प्रोग्राम इज शिव स्तोत्र। इन दिस यू आर अबाउट टू लिसन नागेंद्र हाराय, प्रेजेंटेड बाय मानो कोंटाबी। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।